0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

त्रिपुरघ्नाय नमः, ॐ रिपुघ्नकाय नमः, ॐ पुराणाय नमः, ॐ पुरुषाय नमः, ॐ पुण्याय नमः, ॐ पुण्यगम्याय नमः।

नमः। ओम चारु चंचवे वरेश्वराय नमः। ओम छत्रिणे नमः। ओम छत्रपतये नमः। ओम छात्राय नमः। ओम छत्रेशाय नमः। ओम छात्रपूजिताय नमः। ओम झर्झराय नमः। ओम झंकृतये नमः। ओम झंझायै नमः। ओम झंझेशाय नमः। ओम झंपराय नमः। ओम झराय नमः। ओम झंकेशांडधराय नमः। ओम झारिष्ठाय नमः। ओम कष्टाय नमः। ओम कारपूजिताय नमः। ओम रोमहारये नमः। ओम वृषारये नमः। ओम डुंडिराजाय नमः। ओम झलात्मजाय नमः। ओम डोलशब्दरताय नमः। ओम डक्कायै नमः। ओम डकारेण प्रपूजिताय नमः। ओम तारापतये नमः। ओम तंतवे नमः। ओम तारेशाय नमः। ओम स्तंभसंश्रिताय नमः। ओम थवर्णाय नमः। ओम थूत्काराय नमः। ओम स्थूलाय नमः। ओम धनुजाय नमः। ओम धनुजान्तकृते नमः। ओम दाडिमीकुसुमप्रख्याय नमः। ओम दान्तारये नमः। ओम दर्दरातिगाय नमः। ओम दन्तवक्त्राय नमः। ओम दन्तजिह्वायै नमः। ओम दन्तवक्त्रविनाशनाय नमः। ओम धवाय नमः। ओम धवाग्रजाय नमः। ओम धुन्धुधौन्धुमारये नमः। ओम धराधराय नमः। ओम धम्मिल्लनिने नमः। ओम जनानन्दाय नमः। ओम धर्माधर्मविवर्जिताय नमः। ओम नागेशाय नमः। ओम नागनिलयाय नमः। ओम नारदादिभिरर्चिताय नमः। ओम नन्दाय नमः। ओम नन्दीपतये नमः। ओम नन्दिने नमः। ओम नन्दीश्वरसहायवते नमः। ओम पणाय नमः। ओम पणीश्वराय नमः। ओम पान्थाय नमः। ओम पाथेयाय नमः। ओम पातिकार्चिताय नमः। ओम पाणीयाधिपतये नमः। ओम पाथाय नमः। ओम फलवते नमः। ओम फलसंस्कर्ताय नमः। ओम फणीशतविभूषायै नमः। ओम फणीभूत्कारमण्डिताय नमः। ओम फालाय नमः। ओम फल्गुरताय नमः। ओम फान्ताय नमः। ओम वेणुनाथाय नमः। ओम अनेचराय नमः। ओम वन्यप्रियाय नमः। ओम वनानन्दाय नमः। ओम वनस्पति गणेश्वराय नमः। ओम वालीनिहन्त्रे नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वृन्दावनकुतूहलिने नमः। ओम वेणुनादप्रियाय नमः। ओम वैद्याय नमः। ओम भगणाय नमः। ओम भगणार्चिताय नमः। ओम भेरुण्ढाय नमः। ओम भासकाय नमः। ओम भासिने नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम बाणुपूजिताय नमः।

0: देखो वत्स, मातृवात्सल्य से तुम्हारी पत्नी ने जहां से फूंक मारी उस जगह को देखो और मेरे पूरे शरीर को देखो। जिस जगह पर तुम्हारी पत्नी ने फूंक मारी उस स्थान को छोड़कर मेरे सारे शरीर में मकड़ी के विष से फफोले निकल आए हैं। प्रभु यह कहकर अंतर्धान हो गए। सूर्य की प्रथम किरण से भी पूर्व भक्त नील निकल अपनी पत्नी को सादर घर ले आए। उनका गृहस्थ जीवन आनंद से चलता रहा। इन्हीं तिरुनीलनक्कर के एक घर और एक संत तिरुज्ञान संबंधर अपनी भक्त मंडली के साथ पधारे थे। तिरुनीलनक्कर ने सबका समान रूप से आदर सत्कार किया। अग्निहोत्री ब्राह्मण तिरुनीलनक्कर ने एक पिछड़ी जाति के भक्त तिरुनीलकंठ याल पानर और उनकी पत्नी को अपने घर में यज्ञशाला स्थल के समीप ठहराया था। इस कथा में भक्तिभाव को महत्व दिया गया है, बाहरी विधि विधान को नहीं। यदि पवित्र मन से कर्म किया जाए तो वह प्रभु द्वारा स्वीकार होता है। अंत में तिरुज्ञान संबंधर के विवाह के अवसर पर सारी भक्ति मंडली के साथ यह भी महाज्योति में लीन हो गए। इनके वेदमार्गी ब्राह्मण होने के कई प्रमाण पुराणकर चक्किलर द्वारा प्रयुक्त विशेषणों में से मिलते हैं। चारों वेदों के विख्याता, तीन अग्निवर्धित करने वाले, द्विजन्मा आदि ऐसे शब्द हैं। वेदमार्गी जिन आगमों को नहीं मानते उस आगम विधान के अनुसार से पूजा करते थे। अनुमतः ये कौंडिन्य गोत्र रहे होंगे। त्रिवेदी ऋग्वेदी ब्राह्मणों में केवल इसी गोत्र के लोग शिव को यज्ञ के प्रधान देवता मानते थे और समस्त जपों में पंचाक्षरी को मूल स्थान देते थे। तिरुनीलनक्कर वैदिक उपासना पद्धति और आगम शास्त्र को समन्वय करके अभिषेक और अर्चना आदि षोडश उपचारों के साथ शिव आराधना की सामान्य सर्वमान्य पूजा पद्धति का रूप आकार देने वाले कौंडिन्य ब्राह्मणों में से थे। शैव धर्म में इस पूजा विधान को महत्वपूर्ण स्थान और मान्यता दिलाने का कार्य तिरुज्ञान संबंधर ने किया था। गर्व का विषय यह है कि 1000 वर्ष से भी पहले दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने द्रविड़ चिंतन धारा और वैदिक मार्ग का समन्वय करके जाति भेद को परे रखते हुए अनुकरणीय उपासना मार्ग को रूप दिया। वर्तमान युग में यह देखा जाता है कि आज भी हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव और कलह बना हुआ है। ऐसे में तिरुनीलनक्कर के जीवन का यह पक्ष हमारे लिए अनुकरणीय है।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिव भक्ति से युक्त शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर सायंकालिक 10 दिवसीय विशेष संत प्रवचन माला के क्रम में आज अंतिम दिन यानी 10वां दिन अभ्यास के लिए शिवानंद लहरी अंतर्गत 66वां श्लोक 66 100 श्लोक का ये शिवानंद लहरी है। 3 वर्षों में हम 66 श्लोक तक पहुंच गए हैं। क्रीडार्थम सृजसि प्रपंचमखिलम् क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्मा चरितं मया च भवत प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मच्चेष्टितं निश्चितं तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया बहुविध परितोष बाष्पूरस्फुट पुलकांचित चारुभोग भूमि चिरपदकांक्षित सेव्यमानानां परम सदाशिव भावनां प्रपद्ये अमितमुदमृतं मुहुर्दुहन्तीं विमलभवत् पदगोष्ठमा वसन्तिम् सदय पशुपते सुपुण्यपाकाम् मम परिपालय भक्तिधेनुमेकाम् जडता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वं च नास्मि मयि देव कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव

0: சம்போ ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம் மச்சேஷ்டிதம் நிச்சிதம் தஸ்மான் மாமகரக்ஷணம் பசுபதே கர்த்தவ்யமேவ த்வயா. சிவானந்த லஹரி மே குஷ் ஸ்லோக் ஐசே பாவ கர்வித் ஹே பஹுத் மஹத்வபூர்ண ஹே பக்தோ த்வாரா முமுக்ஷுவோ த்வாரா சிவ பக்தோ கே த்வாரா ஹமேசா குன்குனாதே ரஹே ஐசா பாவ ஹே இன் ஸ்லோகோ மே. इससे पहले हमने बताया था एको बारि जवान दवा चिति न वो, उस श्लोक में जो भाव था वो भाव ये था कि मेरे अंदर अनादिकाल से मूला विद्या यानी अज्ञान रह रही है. परम प्रकाश स्वरूप प्रचंड प्रकाश स्वरूप आपके रहते हुए वो अविद्या रह कैसे गई? भगवान शिव से कहा गया था कि महाराज इसका मतलब है उस अविद्या को नाश करने की आपकी इच्छा नहीं है. इसका यही निष्कर्ष निकला कि मेरे ऊपर आपकी कृपा नहीं हुई है, आप यही चाहते हो. जिसके हृदय में मैं रह रहा हूं उसको मेरा साक्षात्कार न होवे, यही चाहते हो ना? यदि आप संकल्प कर लो जिसके हृदय में मैं रह रहा हूं सृष्टि के आदि से लेकर आज तक, वह व्यक्ति मेरा एक झलक देख लेवे, दर्शन कर लेवे, मेरा साक्षात्कार कर लेवे. आप यदि अपने मन में इतना संकल्प करते होते तब मजाल है कि वो अविद्या हृदय में रह जाए, कब का नष्ट हो गया होता. और जब तक ये भाव, ये कृपा, आपकी कृपा मेरे ऊपर जब तक नहीं बनेगी, न जाने और कब तक ये मूर्खता, ये विडंबना मेरे जीवन में बना रहेगा. इसलिए भगवान अब विलंब मत करो, साक्षात प्रसन्न हो भवा. बहुत हो गया है, इसी के चलते न जाने कितने बार कई योनियों में मैं भटकता रहा हूं. हालांकि जिस योनि में भी मैं गया हूं आपने मेरा परित्याग नहीं किया है. हालांकि मैं ये भी जानता हूं मैं जिस भी योनि में गया हूं आपने मेरा परित्याग नहीं किया है. इतना अनुग्रह तो आपका मेरे ऊपर है, लेकिन आपने मेरा परित्याग नहीं किया, लेकिन मैं आपके साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूं. अब मुझे आपका साक्षात्कार करना है. इसलिए कि आपके साक्षात्कार करना है, क्योंकि एक बार आपका दर्शन हो जाए. कुंती ने कहा भागवत में భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. ఏ భగవన్, ఆప్కా దర్శన్ జిస్నే కర్ లియా, ఏక్ బార్ భీ జిస్నే ఆప్కా దర్శన్ కర్ లియా, ఉస్కో ఫిర్ భవ కా దర్శన్ కర్నే కో కర్నా నహీ పడేగా. భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం, జిస్నే ఆప్కా దర్శన్ కర్ లియా ఉస్కో సంసార్ కా దర్శన్ కర్నా నహీ పడేగా. इसी तरह आपका साक्षात्कार मुझे हो जाए तो फिर मुझे फिर ये 84 योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा. हालांकि मैं ये जानता हूं मैं जिस योनि में भी जाऊं आप मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे, लेकिन कब तक योनियों में भटकता रहूंगा. उसी भाव को यहां अब इन श्लोकों के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी प्रकट करते हैं. क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचमखिलम क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्मा चरितम मया च भवत ప్రీత్యై భవత్యేవ తత్ శంభో స్వస్య కుతూహలస్య కరణం మత్స్యష్టితం నిశ్చితం తస్మాన్ మామకరక్షణం పశుపతే సా కర్తవ్యమేవ త్వయా. పశుపతే సంబోధన హే. హే పశుపతి, క్రీడార్థం సృజసి ప్రపంచమఖిలం, సారే ప్రపంచం కో ఆపనే అకేలే రమణ కర్నే కీ సంభావన నా హోనే పర్ అకేలే ఖేల్నే కీ సంభావన न होने पर सह क्रीड़ा के हेतु से आपने सारे प्रपंचों की रचना की है. बच्चे लोग जब अकेले, जब बच्चों को खेलने की इच्छा होती है तो घर से बाहर निकलते हैं और साथी खोजने चले जाते हैं, और ये व्यवहार में हमने देखा है बच्चे लोग जितनी जल्दी मित्रता कर लेते हैं हम लोग उतनी जल्दी मित्रता नहीं कर पाते. हम लोग तो बहुत विचार करते हैं इसे बात करें कि न करें, इसे मित्रता बनाएं कि न बनाएं, इसके नजदीकता बढ़ाएं कि न बढ़ाएं, पता नहीं कैसा है, क्या कहेगा, क्यों कहेगा, क्या करेगा, कैसा व्यक्ति है, मन में हजार बात सोचते. बच्चे ये सब नहीं सोचते. बच्चों को तो अपने बराबर के कोई देख लिया तो बस उससे तुरंत जाकर मित्रता, क्योंकि उनमें मन में ये सब बात नहीं खेलती है, ये सारी बातें स्फुरित नहीं होती है. उनको मित्र चाहिए, साथी चाहिए, तुरंत मित्रता कर लेंगे वो. लेकिन जितनी जल्दी मित्रता करते हैं उतनी जल्दी झगड़ा भी करते हैं, और जितनी जगड़ी झगड़ा कर लेते हैं उतनी जल्दी फिर साम्यता भी हो जाती है उनमें. उनकी मित्रता और उनकी जो झगड़ा उन बच्चों की एक साहजिक है. साहजिक है माने कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, उनका वो सहज है. झगड़ा सहज है, मित्रता सहज है, रोना सहज है, हंसना सहज है, झगड़ना सहज है, मित्रता सहज है, क्योंकि उनका सारा जीवन ही सहज है। इसलिए शायद सहज है, इसलिए वो ज्यादा खेल पाते हैं और हमारा जीवन बहुत जटिल बनता जा रहा है। उस जटिलता का कारण अपना ईगो है, अंदर अंदर की जो अहमता है वो जटिल बना रही है जीवन को, और शायद उसी अहम के चलते हम तुरंत मित्रता नहीं कर पाते हैं, और शायद उसी अहंकार के चलते तुरंत झगड़ा हो जाता है, और उसी अहंकार के चलते वो झगड़ा बहुत लंबा चलता है। उस मन की जो मिटावट है, वो घृणा है, वो नफरत है, घंटा दो घंटे में समाप्त नहीं होता। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं, दसों वर्ष हो चुका है फिर भी वो अंदर की गिल्टी, वो गांठ खुली नहीं है। दसों वर्ष हो चुका है, छोटी सी किसी बात पर कुछ ठनी, कुछ कहा सुनी हुई, आज तक वो ग्रंथि हृदय से खुल नहीं पा रही है। ये अहम के अलावा और कुछ भी नहीं है ये समस्या। इसलिए जीवन को साहजिक बनाना बहुत जरूरी है, नेचुरल बनाओ, सहज बनाओ। आदिगुरु शंकराचार्य जी सृष्टि का प्रयोजन बता रहे हैं। हे महाराज, हे पशुपति, संबोधन है पशुपति, आपने ये सृष्टि, ये जगत रचना, ये प्रपंचों की रचना, चर और अचर जगत की रचना क्यों किया? मुझे लगता है ये बात शंकराचार्य जी श्रुति के आधार पर कह रहे हैं, प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं, कल्पना नहीं कर रहे हैं। उपनिषदों में ये चर्चा है, इसीलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि आप सजातीय विजातीय स्वगत भेद त्रय शून्य एक अखंड सत्ता के रूप में रह रहे थे, तो आपको अकेले रहने में मजा नहीं आया। हाँ, रह रहे थे लेकिन अकेले रहने में मजा नहीं आया। देखो, आनंद आना दूसरी चीज है, मजा आना दूसरी चीज है। आनंद आना दूसरी चीज है, मजा आना दूसरी चीज है। आनंद अपने आप आता है क्योंकि अपना स्वरूप ही है, इसलिए आनंद कहीं बाहर से नहीं आता। मजा बाहर के किसी संबंध से आता है। बढ़िया बढ़िया मिर्ची के गरम गरम पकौड़े खाओ चटनी के साथ, मजा आवी गयो हो ले जी, सु मजा आवी गयो, मोड़ो जली ने शू शू करे छे, पछी कहे छे मजा आवी गयो, मुख के जलन में भी मजा आ रहा है, ये भी जान रहा है कि मुख के जलन के बाद पेट जलेगा, पेट जलने के बाद पता नहीं क्या क्या जलेगा, फिर भी ये नहीं कहना नहीं छोड़ रहा है कि मजा आ गया। किसी निमित्त से आता है, किसी बाह्य साधनों से आता है मजा। साधन निरपेक्ष आनंद आता है, आनंद अपना स्वरूप है, मजा अपना स्वरूप नहीं है। ये वेदांत का रहस्य है वो। इसलिए मजाक के लिए क्या चाहिए, अन्यों की जरूरत पड़ती है, अन्यों के संबंध से मजा आता है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम। हे पशुपते, खेल के लिए आपने सारे प्रपंचों की रचना की है, खेलने के लिए की है रचना। ये रहस्य न समझने वाले व्यक्ति हर प्रसंग में परमात्मा पर दोषारोपण करते हैं। ये परमात्मा ने जगत क्यों बनाई, नहीं बनाता तो उसका क्या बिगड़ता। दुखालयम अशाश्वतम, गीता का वाक्य है ना। ये संसार कैसा है, अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम अशाश्वतम, ये गीता के वाक्य हैं। ये दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम, इस लोक की रचना किसने की? भगवान ने उत्तर दिया है कृष्ण ने, हे अर्जुन, इन सब की रचना मैंने की है।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमा प्रेजेंटेड बाय स्वामी संतोषी माताजी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: बोलिए सच्चिदानंद।

शिवा तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। सदघन चिदघन आनंदघन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ भगवान आशुतोष चंद्र मौली चंद्रचूड़ चंद्रनाथ सदाशिव के शेष शब्द पर विचार कर रहे थे। पंचाक्षर में ये मध्य का अक्षर है, नमः दो अक्षर आगे, वायः दो अक्षर पीछे, बीच का अक्षर है मध्य का शिव। ये अक्षर कैसे हैं, कितने सुंदर हैं। कथा आती है यज्ञवल्क्य ऋषि के गुरु थे वैश्वापायन जी। वैश्वापायन जी को एक बार ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या का मतलब ये नहीं समझना कि किसी ब्राह्मण को मार दिया। ब्रह्म हत्या का दोष उन्हें लगा उनके एक बार ब्रह्म सभा थी ब्रह्मवर्त पर। इस ब्रह्म सभा का निमंत्रण अर्थात ये ब्रह्म सभा क्या है, बोले सत्संग है। सत्संग का निमंत्रण जहाँ ब्रह्म वेताओं की ज्ञानियों की एक सभा थी सत्संग था, उस सभा का निमंत्रण आने का वैश्वापायन जी को भी मिला, परंतु वो उस सभा में नहीं जा सके। उसका कारण ये था कि उस दिन उनके घर में उनके पिता का श्राद्ध था, जिस कारण वो इस निमंत्रण में नहीं जा सके। न जाने के कारण उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, पाप लग गया। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कहीं सत्संग से आपको निमंत्रण मिले तो आपको उसमें जरूर जाना चाहिए। यद्यपि मैं तो ये कहती हूँ कि सत्संग के लिए निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। यदि जहाँ कहीं भी सत्संग हो वहाँ अवश्य जाना चाहिए। न जाने क्योंकि जीवन को बदलने की ताकत केवल सत्संग में है। सर्व अशांत आसक्ति को छुड़ाने के लिए आसक्ति को छुड़ाने वाला केवल सत्संग है। और जब तक संसार की आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक हमारा जीवन भयमुक्त नहीं हो सकता। और जो भयभीत जीवन है वही अशांत है, दुख रूप है। और भयमुक्त जीवन, जिस जीवन में कोई भय न रह जाए, निर्भयता जीवन में आती है तो केवल सत्संग से आती है। सत्संग जीवन में बहुत परम आवश्यक है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए। वैश्वापायन जी सत्संग में नहीं जा सके, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो गुरुदेव के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगते हुए देखकर उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों ने मन में विचार किया कि गुरुदेव की इस हत्या का हम लोग मिलकर प्रायश्चित्य करेंगे। सारे शिष्य मिलकर प्रायश्चित करने लगे तो बात तो ऐसी हो गई कि छोटी छोटी उन सारे शिष्यों को प्रायश्चित्य करते हुए देखकर याज्ञवल्क्य के मन में ऐसा विचार आया, वो सोचने लगे कि देखो ये सब जो प्रायश्चित कर रहे हैं ये तो ऐसा ही लगता है जैसे सब चींटियां मिलकर के बकरे को घसीट रही हूँ, खींच रही हूँ। तो क्या इन चींटियों से बकरा कभी खींचने वाला है, वो खींच सकता है? अर्थात गुरुदेव के छोटे मोटे शिष्य प्रायश्चित कर रहे हैं, क्या इन सबों के करने से गुरुदेव का प्रायश्चित हो जाएगा इस कर्म का? मन में ये शंका हुई। गुरुदेव को लगा कि देखो इसको दिया हुआ दी हुई जो इसे जो ये घमंड है
कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ और ये याज्ञवल्क्य को जो घमंड हो गया है ये मेरी विद्या के कारण। विद्या साददाति विनम्रता, विद्या में विनम्रता आनी चाहिए। विद्या प्राप्त हो करके विद्या का घमंड अभिमान नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने सोचा कि ये विद्या का इसे अभिमान हो गया है। गुरुदेव ने उसे उनसे याज्ञवल्क्य से कहा कि तुम्हें ये अभिमान हो गया मेरी दी विद्या का, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे द्वारा दी हुई सारी विद्या को उगल दो। आदेश दिया, बमन करो। जब बमन कर किया उन्होंने तो एक एक अक्षर अर्थात मोती की तरह चमकने लगा। ये अक्षर कितने सुंदर हैं, इस पर मुझे बात स्मरण हुई कि एक एक अक्षर मोती के समान प्रकाश से युक्त चमकने लगे। इन मोती के समान चमकते हुए इन अक्षरों को देखकर उसी समय समस्त उन अक्षरों को चुन लिया, मतलब तीतर बन करके वो एक एक अक्षर को देवता लोग अन्य उनके जो शिष्य थे तीतर के रूप में उन अक्षरों को चुनकर मोती के समान ग्रहण कर लिया, तो उससे एक शाखा निकली, तैतरी शाखा, वेद की तैतरी शाखा। और फिर याज्ञवल्क्य ने दोबारा से सूर्य की उपासना की और सूर्य की उपासना के द्वारा उनको जो वेद प्राप्त हुए उन वेदों का नाम है नारा शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें से वाजपेयी शाखा आदि है, वाजपेयी शाखा उससे प्रकट हुई। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि एक एक अक्षर इतना सुंदर है, इतना चमकदार है, मोती की तरह चमक रहा, कहने का अर्थ है प्रकाश से युक्त है। ये जो पांचों अक्षर हैं नमः और शिवाय, ये पांचों के पांचों शब्द इतने सुंदर हैं कि मोती के समान चमकने वाले हैं, प्रकाश पुंज हैं। इन अक्षरों का बड़ा भारी महत्व है। शिवाय ये शी जो शब्द है मध्य का शब्द है, अर्थात शी शब्द से शिव है। शिव का एक अर्थ होता है योग, शिव का एक अर्थ होता है योग, इसको कहते हैं शिव योग। शिव पुराण में तप योग, क्रिया योग और जप, शिव योग ये कहकर के बताया गया है, अर्थात जप योग। शिव का अर्थ जप योग भी है, जप करना यह भी योग है, शिव योग इसको कहते हैं। भगवान के नाम का निरंतर जप करना, इसका नाम शिव योग है। भगवान की सेवा करना ये क्रिया योग है। और शिव का अर्थ भद्र होता है, कल्याण होता है। शिव का अर्थ शिव जो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर के जो जगत में ऐसे व्याप्त है जैसे स्वर्ण में सोने का, सोने के टुकड़े से लेकर के हमने कुंडल बनाए, सोने को लेकर के कंगन बनाया, कंगन का आकार दिया और कंगनाकार में स्वर्ण विद्यमान है, कुंडलाकार में स्वर्ण विद्यमान है। अर्थात सोने में जब ये आकार घटित हुआ तो तब सोना उसके आकार में आके कब बस गया ये किसी को नहीं मालूम। अर्थात मालूम नहीं कहने का अभिप्राय ये है कि सोना तो है ही है, वो पूर्ववत है। उसी प्रकार जो सकल सृष्टि के आकार को ग्रहण करने के से पूर्व भी जो था, आकार ग्रहण करने पर भी जो है और आकार ग्रहण नष्ट होने पर भी जो का त्यों रहेगा, ऐसा जो सनातन व्यापक तत्व है वही शिव है।
इसलिए शिव का अर्थ भद्र है, शिव का अर्थ योग है, शिव का अर्थ मंगल है, शिव का अर्थ कल्याण है, शिव का अर्थ शुभ है। एक सी के बहुत सारे अर्थ है नारायण, इसलिए कहा शिवाय गौरी वंदना। और शिव के संग में रहने वाली कौन है, बोले गौरी है। शिव कैसे हैं? शिव गौर हैं। इसीलिए तो आप कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान शिव गौर है, अत्यंत प्रकाश युक्त है, प्रकाशमय है। शिव का अर्थ स्वप्रकाश भी होता है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उनके साथ रहने वाली जो आद्या शक्ति है गौरी, जिनका नाम है, ये गौरी भगवती काली, जिनको गौरी भी कहते हैं, ये महाकाल के संग में जब रहती हैं तब ये महाकाली कहलाती हैं। महाकाल जो सकल सृष्टि के संहार कारक देव हैं, जिनका नाम है महाकाल। काल जो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, जिसकी प्रतीक्षा संपूर्ण जगत को है। काल चक्र जिसे हम कहते हैं, काल गति हमें जिसे कहते हैं, काल जिसे हम मृत्यु कहते हैं, अर्थात काल जो सकल सृष्टि को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, उसे हम काल कहते हैं। और उस काल की गति के ऊपर जो नियंत्रण करे, उस शक्ति का नाम है काली। अर्थात महाकाल के संग में रहने वाली देवी, जिनका नाम महाकाली है, वही महाकाली जब भगवान शिव के संग में रहती हैं, तो उनका रूप कैसा हो जाता है, बोले अत्यंत गौर। काली बनकर के वो सृष्टि का संहार करती है। इस पर ये काली शक्ति कैसी शक्ति है, संहार कारिणी शक्ति कैसी है, कहा कि इसका प्रत्यक्ष दर्शन किसने किया। महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध को में पांडवों की जीत हुई, पांडव विजयी हुए। धनुर्धर अर्जुन के मन में ये विचार आया कि देखो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध मैंने जीता है। वो अपने आप को इस युद्ध का विजेता मानने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि ये जो युद्ध जीता, ये धर्म के प्रभाव से ये युद्ध को हमने जीता। और नकुल और सहदेव समझे कि ये युद्ध हमने जीता। वायुपुत्र भीम सोचे कि ये यज्ञ, ये महाभारत का युद्ध हमने जीता। पांडव ये सोचने लगे कि ये युद्ध के हम विजेता हैं, हमने इस युद्ध को जीता। वास्तव में ये युद्ध लड़ा कौन और जीता कौन, पर पांडव समझ रहे हैं कि ये युद्ध हम लड़े हैं और हमने इसकी जीत प्राप्त की है। भगवान से, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये वास्तव में युद्ध जीतने का इन पांडवों को अभिमान हो गया है। और भगवान भला इस बात को कहाँ सहन कर सकें कि उनके भक्तों को अभिमान हो। अभिमानोपहारी, अभिमान का हनन करना, अभिमान का मर्दन करना, और अभिमान को ऐसे अपने भक्त के अहम को छुड़ाना, ये भगवान उसे स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान देख चाहते हैं कि मेरा भक्त निराभिमानी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई अहम न रह जाए। ये अहम का दोष दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। अर्जुन ने जब ये कहा कि प्रभु मैंने ये सारा युद्ध लड़ा, कहने लगे अर्जुन ये युद्ध किसने लड़ा, ये सही सही तो कौन जान सकता है। बोले जिसने ये युद्ध देखा हो, ये युद्ध जिसने देखा हो, किसने देखा, बोले वरवरिक ने देखा कि ऊपर रखकर सिर से उन्होंने इस युद्ध को, आकाश से दूर पर्वत पर स्थित होकर उन्होंने ये युद्ध देखा, वही तुम्हें बता सकते। उनसे पूछा
उनके समीप जाकर के ये युद्ध तुमने देखा? बोले हाँ मैंने देखा। तो अर्जुन ने सोचा कि ये युद्ध मेरी प्रशंसा करेंगे कि अर्जुन तुम बड़े ही गांडीव धनुर्धारी थे और तुमने ये युद्ध बड़े पराक्रम के साथ लड़ा, वीरता की मेरी प्रशंसा होगी। परंतु जब उनके पास जाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल युद्ध में एक ही देखा, एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? कि कोई देवी एक ऐसी है जिसके केस खुले हुए हैं, हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में खप्पर है और

कारण चंडी रण के बीच में नृत्य करती सी नाचती हुई सी मुझे दिखाई दी और नृत्य करते करते उसी माँ देवी ने सबको युद्ध में समाप्त किया। मैंने देखा तो सिर्फ एक काली को देखा और किसी दूसरे को नहीं देखा। तो ये जो नृत्य करने वाली कौन है, बोले महाकाल की शक्ति। वो काली बन करके जब काल के संग में रहती हैं, तो वो काली बन जाती हैं महाकाल के संग में, और वही शक्ति जब पांडवों के संग में रहती हैं, तो तब वो द्रौपदी बन करके, क्योंकि द्रौपदी की उत्पत्ति किससे हुई है, बोली यज्ञ से। यज्ञ से प्रकट होने वाली ये देवी यज्ञ से पवित्र हैं, अर्थात जो स्वयं अग्नि रूपा हैं, अग्निपुत्री हैं, अग्नि की शक्ति है, जिनके अंदर दाहकता है, ऐसी दिव्य शक्ति माँ द्रौपदी हैं। तो इसलिए कहा द्रौपदी ही काली बन करके नृत्य करती हुई ये युद्ध लड़ती हुई मुझे साक्षात रूप से दिखाई पड़ी। तो काल के संग में रहने वाली देवी का नाम है काली, और भगवान शिव के संग में रहने वाली देवी का नाम है गौरी। गौरी अत्यंत गौर वर्ण की। बोले ये गौरी कैसे हो गई? ये गौर हो गई शिव योग करते करते। शिव पुराण में कथा आती है कि भगवती उमा जब तपश्चर्या करने के लिए गई, तो एक दिन तप करते करते उनका शरीर इतना गौर वर्ण का हो गया, तप का तेज उनके शरीर में ऐसा व्याप्त हो गया कि उनका नाम ही गौरी पड़ गया। तब के कारण जो अत्यंत तेजोमयी है, अर्थात गौर वर्ण की हो गई, इसलिए उनका नाम गौरी हो गया, तब के कारण पड़ा। और ये तप किसके लिए किया? भगवान शिव के लिए किया। तो इसलिए कहते हैं तप योग जप योग, और जप योग भगवान शिव का नाम है। भगवान शिव तप से जप योग की प्राप्ति की जाती है। तप योग का नाम गौरी है और जप योग का नाम शिव है। शिव निरंतर जप करते हैं। भगवान शिव निरंतर जप करते हैं। बोले किसका जप करते हैं? भगवान उस महाशिव शक्ति का स्मरण करते हैं, जो शक्ति उनकी दक्ष के यज्ञ में सती हो गई, अर्थात परम वियोगी शिव निरंतर उस शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। और इधर निरंतर भगवान शिव के साथ शिव के संयोग को प्राप्त करने वाली, शिव की प्राप्ति करने के लिए निरंतर उमा तप कर रही हैं, वो तप योग है। इस प्रकार वो शिव को प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये दोनों कथा शिव पुराण में आती है नारायण, इसलिए ये गौरी है। और सूर्य लोक पर्यंत तक, सूर्य लोक तक जिसका दिव्य प्रकाश है, दक्ष के यज्ञ को जो विध्वंस करने वाले हैं, दक्ष अर्थात कर्म के अभिमान का विध्वंस करने वाले, ऐसे भगवान नीलकंठ जिनके जो वृषभ पर आरूढ़ है, भगवान शंकर का वाहन है वृषभ माने बैल। ये बैल कोई साधारण बैल नहीं है, ये वृषभ तो धर्मा अवतार है, धर्म का प्रतीक है। वृषभ को धर्म कहा गया है, ये धर्म सूचक धर्म का चिन्ह है। भगवान शिव किस पर बैठते हैं? बोले वृषभ पर बैठते हैं। ये वृषभ साक्षात धर्म है। जहाँ धर्म है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ धर्म है। धर्म के साथ, धर्म के साथ जो प्राप्त होते हैं, धर्म के चार पाद हैं नारायण, चतुष्ट पाद कहे गए हैं। धर्म के सत्य, दया, शौच और दान, ये धर्म के चार पाद कहे गए हैं, ये वृषभ के चार पांव हैं। बोले इस कलिकाल में, इस कलयुग में जो धर्म चतुष्पाद था, अर्थात पहला पाद सत्य, दया, शौच, ये तीन चीजें, ये तीन पाद धर्म के कम हो

0: तो स्वाभाविक होता है। मैं हमेशा कहती हूँ मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। किसके लिए? झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने के लिए तोलना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए विचार करना पड़ता है, पर सत्य बोलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इतना सहज है, सच बोलना बहुत सहज है, परंतु हम लोग सोचते हैं कि सच बोलने से, इतना सहज होने पर भी सच नहीं बोलते हैं, उसका कारण क्या है? हम सोचते हैं यदि हम यहाँ सच बोलेंगे तो शायद बात बिगड़ जाएगी, झूठ बोलेंगे तो बात बन जाएगी। झूठ पर हमारा विश्वास है, झूठ बोलेंगे तो हमारा सम्मान, शायद झूठ बोलने से मेरा सम्मान बच जाए, झूठ बोलने से मेरा आदर बना रहेगा। ऐसा जो हमारा झूठ के प्रति विश्वास हो गया है, झूठ बोलने से मेरा सम्मान बनेगा, झूठ बोलने से मेरी बात बन जाएगी, झूठ बोलने से मुझे प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार का हमारा विश्वास किस पर हो गया है? झूठ पर हो गया। और कभी कभी आपने देखा कि झूठ बोल करके आप बच निकल आते हैं, तो कहते हैं देखा मैंने झूठ बोला तो मेरी बात बन गई, मैं बच निकला, मेरी ये बात बिगड़ती भी बन गई। तो आपने कभी ये विचार किया कि वास्तव में ये झूठ बोलने से बात बनी या झूठ पर विश्वास करने से बात बनी? झूठ पर विश्वास कर लिया हमने तो बात तो बनी है विश्वास से। जैसा विश्वास, जैसा निश्चय आपका झूठ के प्रति हो गया है, यदि ऐसा विश्वास, ऐसा निश्चय आपका सत्य के प्रति हो जाए, सत्य के प्रति ऐसा विश्वास हो जाए, तो निश्चित सत्य से आपकी रक्षा होगी। और बहुत से लोग कहते हैं अरे सत्य तो बड़ा ही कड़वा होता है, भला उसे कौन सुनना चाहता है। प्रायः आजकल लोग बोल देते हैं सत्य बड़ा कड़वा है, पर याद रखना सत्य कड़वा नहीं है। सत्य के साथ दो चीजें जुड़ी हुई, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिव भी है और सुंदर भी है। सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra, presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: तत्व जिज्ञासु सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग वैदिक शांति पाठ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पाठक्रम से छठे शांति पाठ के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं, जो सामवेद के अंतर्गत है। सामवेद की केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद के अध्ययन करते समय इसका पाठ किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में सामवेद मैं हूं। ऐसा जो सामवेद के अंतर्गत ये मंत्र पाठ है। और विघ्न की निवृत्ति के लिए इसका पाठ किया जाता है।

0: कल हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ शुरुआत की, सामान्यतः विचार किया। विशेष रूप से यदि कहे तो यही कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, विघ्न है, उसकी जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम उस ब्रह्म तत्व को जान नहीं सकते हैं। परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मनमेक्षदावृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। स्वभाव से यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी इंद्रिया है वो बहिर्मुखी है, बाहर की ओर देखती है। परांची खानी परांग पश्यति इति, परांची जो बाहर का ही देख सके। देखे हम चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान करते हैं वो बाहर का ही करते हैं। चक्षु के द्वारा देखते हैं तो क्या देखते हैं? यही रूप देखते हैं। कान के द्वारा यदि सुनते हैं तो बाह्य शब्द को ही सुनते और चखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं तो बाह्य विषय को ही स्पर्श करते हैं। हमारी इंद्रिया जिस ओर अभिमुख हो जाती है तो हमको उसी का लाभ मिलता है। अब यहां लाभ लेना है ब्रह्म का, तो ब्रह्म बाहर है या अंदर है बताओ? अंदर है। तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करनी पड़ेगी। अब स्वभाव है बाहर की ओर जाने का, और बाहर की ओर जाने का स्वभाव कोई आजकल का है क्या? न जाने करोड़ों जन्मों से है। बाह्य शब्द, बाह्य स्पर्श, बाह्य रूप, बाह्य रस और बाह्य गंध का ग्रहण करने का ही जिसका दृढ़ अभ्यास है, अब जो है इस मनुष्य जन्म में हमने ये पाया कि संसार से, सांसारिक लाभ से ब्रह्म का लाभ है, वही सर्वोत्तम है, और उसी को प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर है। तो फिर उस ब्रह्म लाभ को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को अंतर्मुखी करनी पड़ेगी। और जो धीर पुरुष अंतर्मुखी इंद्रियों को करते हैं ने वही अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। और जो बहिर्मुख है वह तो बाह्य संसार में दुख पाते ही है, किंतु यदि अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करनी है। सबसे बड़ा विघ्न यही है कि इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी है। यदि आप बाहर को जाने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं है, किंतु जैसे ही आप चाहे कि अंतर्मुखी हो और परमात्मा की ओर अभिमुख हो तो बड़ा कष्ट होने लगता है। देखिए जो कभी सत्संग में नहीं आया है उनको कहे कि आप चलिए एक घंटा बैठना, तो वो उनको बढ़िया से कुर्सी में बिठाइए, वो छटपटाने लगता है कि यहां कैसे आ गए। कुछ खाने पीने की बात करते, कुछ घूमने फिरने की बात करते तो मजा आता, अब ये क्या है, इसलिए वो छटपटाने लगता है क्योंकि उनका अभ्यास नहीं है। इसलिए ये जो विघ्न है उस विघ्न की निवृत्ति के लिए यहां प्रार्थना की जा रही है देवता से, परमात्मा से, ईश्वर से, ताकि ईश्वर की सहायता से हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करें और आत्म तत्व का दर्शन करें। इसलिए शांति पाठ का उच्चारण किया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि केनोपनिषद पढ़ते समय ये जो सामवेदीय शांति पाठ है उनका पाठ किया जाता है। परंपरा यह है कि जो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं उस उपनिषद में जो मंगल पाठ है उनका पाठ आदि में किया जाता है। तो अब देखिए केनोपनिषद में जो परमात्मा का प्रतिपादन है वो बड़ा गूढ़ है और जैसा परमात्मा का और ब्रह्म का प्रतिपादन केनोपनिषद में है वो दुर्लभ है। बिल्कुल परमात्मा का नजीक से यदि प्रतिपादन है तो केनोपनिषद में है, एकदम नजदीक लिए मुमुक्षु को ले जाते हैं वो। लेकिन विडंबना यह है कि वहां पहले ही कहा न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः कथम एतद विजानीयाम यथा एतद अनुशेष्यात। ब्रह्म का दर्शन कराना, अब दर्शन करने के लिए हमारे पास ये चक्षुर इंद्रिय ही है और तो कोई जरिया नहीं है। और वहां पहले ही कह दिया कि न तत्र चक्षुर गच्छति, अब बताओ उसका दर्शन चक्षु से संभव नहीं है और हमारे पास जो है वो जरिया है वो क्या है, यही चक्षु है। किसी चीज को देखना है तो चक्षु के द्वारा ही देख सकते हैं और तो कोई साधन ही नहीं है। और ब्रह्म का दर्शन करना है तो ब्रह्म का दर्शन चक्षु से कहते हैं नहीं हो सकता है, और चक्षु से अभिप्राय है ज्ञानेन्द्रिया। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है चक्षु से दर्शन न हो सके, कान से तो श्रवण तो हो सकता है क्योंकि प्रत्यक्ष पांच प्रकार से होता है। सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि जो आंख से दिखे उनको ही प्रत्यक्ष मानते, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन पांच प्रकार से होता है। आंख से जो होता है उनको भी प्रत्यक्ष कहते हैं और कान से भी प्रत्यक्ष होता है, त्वगिंद्रिय से, घ्राणेन्द्रिय से और रसना इंद्रिय से भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं बताओ। मैं जो बोल रहा हूं उनका प्रत्यक्ष आप किससे कर रहे, कान से। और बढ़िया बढ़िया जो भोजन उनका आस्वादन, ये मीठा है ये नमकीन है ये कड़वा है तीता है वगैरह, वो जो दर्शन है वो किससे कर दे, आंख से होगा नहीं, वो रसना इंद्रिय से होगा। और सुरभि और असुरभि दो प्रकार की जो गंध है उस गंध का ग्रहण, गंध का प्रत्यक्ष किससे करेंगे, नासिका से, प्राणेन्द्रिय से करेंगे। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो प्रत्यक्ष का विषय है, उनको प्रत्यक्ष करने के लिए पांच ज्ञानेन्द्रिय है, पांचों ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष होता है। इसलिए यहां चक्षु का जब निषेध किया कि चक्षु के द्वारा उनका दर्शन नहीं हो सकता है तो ये मानना होगा कि चक्षु से अतिरिक्त और जो चार ज्ञान इंद्रिया है उनकी भी प्रवृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि चक्षु आदि इंद्रियों में, पांच ज्ञान इंद्रियों में चक्षु श्रोत्र से भी ज्यादा प्रधान है। यद्यपि श्रोत्र भी प्रधान है किंतु श्रोत्र की अपेक्षा भी चक्षु प्रधान है, इसलिए चक्षु का जब निषेध हो गया तो पांचों ज्ञान इंद्रियों का निषेध स्वतः समझ लिया जाता है। तो यह अर्थ हुआ कि यह ब्रह्म का दर्शन पांचों ज्ञान इंद्रियों से हो नहीं सकता है। तो फिर आप कहेंगे कि तभी इंद्रियों की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, अभिप्राय यह है कि पांचों ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जैसे शब्दादि विषयों का प्रत्यक्ष होता है ना, वैसे ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, ये अभिप्राय। क्योंकि ब्रह्म है वो बाहर नहीं है किंतु अंदर है। आप कहेंगे कि बाहर भी तो सर्वत्र तो कहते ही है स्वामी जी, अंदर होने का अभिप्राय है कि साक्षात्कार अंदर होता है, बाहर होते हुए भी बाहर उनका साक्षात्कार नहीं होता है, साक्षात्कार अंतकरण में होता है। इसलिए ये जो ज्ञानेन्द्रिया है वो ज्ञानेन्द्रिया के द्वारा ब्रह्म का दर्शन ऐसे होगा कि वो चक्षुरादि इंद्रियों का भी वो अंतरात्मा है। इसलिए चक्षुरादि इंद्रियों की भी आवश्यकता है, ऐसे समझ लो। एक अंधा व्यक्ति है और एक पंगु है, जो दोनों पैर से सही है वो देख नहीं सकता है, और पंगु है वो देख सकता है किंतु चल नहीं सकता है। वो दोनों जो है एक हो जाए एक दूसरे के साथ लेकर के, तो वो चल भी सकेंगे और देख भी सकेंगे। तो जिसको देखना है जाना है तो वो पंगु का साथ ले तो वो काम उनका हो जाएगा। यानी जो देख सकता है पंगु, वो दोनों पैर सही है किंतु देख नहीं सकता, उसके कभे ऊपर बैठ जाए तो वो उनको पंगु को भी गंतव्य स्थान पर वो भी पहुंच जाएगा और जो नहीं देख सकता है वो भी पहुंच जाएगा। वैसे ही ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा सीधी सीधा दर्शन नहीं हो सकता है, किंतु ये ज्ञानेन्द्रिया जिसके द्वारा देख सकती है वो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म दर्शन के लिए चक्षुरादि इंद्रिया की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए कहा यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। कहा जो चक्षु के द्वारा जिसको आप देख नहीं सकते, किंतु कहा येन चक्षुंषि पश्यति, जिसके द्वारा अर्थात कि जिसके रहते हुए ये जो हमारी चक्षुरिंद्रिय है वो रूप दर्शन में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म। देखो उपनिषद कहती है तद एव, वो ही ब्रह्म है। न इदम यद इदम उपासते, जो बाह्य है इंद्रियों का विषय है वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए इंद्रियों को अंतर्मुखी करना जरूरी है, तभी ये सामवेदी केनोपनिषद में प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसका दर्शन हो सकता है। इसलिए यहां पर पहले ही कहा इस शांति पाठ में, ये ब्रह्म दर्शन के लिए इंद्रिया इंद्रिया क्या हमारा पूरा कार्यक्रम संगात वो तद अनुकूल हो, इसलिए प्रार्थना की गई। ममांगानी वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम आप्यायन्तु। देखिए ये जो शांति पाठ है ना, इनके आप सात वाक्य बना दीजिए और एक एक को पकड़ेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सात वाक्य बना देते हैं हम। देखो पहला वाक्य है ममांगानि वाक प्राण चक्षुः श्रोत्रम सर्वाणि इंद्रियाणि आप्यायन्तु। उसमें जो है जिस क्रम से है उस क्रम का भंग करके वाक्य में बनाना होगा उसको। तो वाक्य बन जाएगा कि ममांगानि, जो मुमुक्षु है वो मुमुक्षु प्रार्थना कर रहे हैं कि ममांगानि यानी कि मम अंगानि, मम से अभिप्राय है मुमुक्षु हो, मैं जो मुमुक्षु हूं वो मम अंगानि, मेरे जो अंग है। देखो कौन कौन से अंग है वो यहां पर गिना दिए गए। वाक आप्यायन्तु, मेरी जो वाणी है, वाणी से उपलक्षण मान करके पांचों कर्मेंद्री ले लीजिए। तो पहले ही मुमुक्षु इस प्रकार की यहां पर जो है प्रार्थना कर रहे, भावना कर रहे कि मम वाक आप्यायन्तु, मेरी जो वाणी है वो आप्यायन्तु, पांचों कर्मेंद्रिय है वो आप्यायन्तु। आप्यायन्तु का अर्थ कर रहे ब्रह्म ध्यान अनुकूलतया वृद्धिं प्राप्नुवन्तु, यानी कि मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं इस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। अब कर्म इंद्रियों से क्या होगा? सबसे पहले देखे कर्म इंद्रियों की बड़ी आवश्यकता है और कर्म इंद्रियों में सबसे पहले वाणी है। वाणी है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल कब हो सकती है? क्या वो वाणी कोई ध्यान थोड़ी नहीं कर सकती है? आप्यायन्तु का अर्थ तो है ब्रह्म ध्यान अनुकूलतया वृद्धिं प्राप्नुयन्तु। तो वाणी से कोई ध्यान होगा नहीं। देखिए यदि वाणी का जो अपना कार्य है, वाणी को जो करना चाहिए, वाणी के द्वारा जो करने के लिए बताया गया यदि वो हो तो विक्षेप का अभाव हो जाएगा। जैसे हम वाणी से सत्य बोले तो फिर हमारे मन में ये कभी दोष नहीं आएगा, हमारा मन बिल्कुल निर्दोष हो जाएगा कि भाई मैंने झूठ नहीं कहा। देखिए यदि किसी बात का किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है और वो आरोप गलत है तो वो जो व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता है, वो यही निश्चय मान करके चलता है कि मैं तो सही हूं, मैंने कोई झूठ बोला नहीं है, तो मैं छूट ही जाऊंगा। और जो झूठ बोला है और कहता है कि मैंने नहीं बोला है तो ठीक है, बाहर से तो बोले किंतु उनकी अंतरात्मा तो उनको डसती रहेगी। अंदर विक्षेप जरूर होगा कि क्या होगा, न जाने मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वाणी के द्वारा सत्य वदन प्रथम आवश्यक है। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्येन पंथा वितते देवयानः। और आत्मा, आत्म प्राप्ति में साधन भी है सत्य। सत्येन लभ्य तपसा एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। इसलिए वाणी का सत्य वदन प्रथम आवश्यक है। इसलिए कहा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम सत्यम च नानृतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। व्यवहार में भी सत्य, तो वो यदि वाणी के द्वारा हम सत्यवदन कर रहे तो वो जो वाणी है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल मानी जाएगी। सत्य बोलना वाणी का तप है। देखिए तप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तप क्यों किया जाता है, कि तप से तपा हुआ है वो शुद्ध हो जाता है। देखिए सोने को आप जितना तपाएंगे उतना वो शुद्ध होगा, वैसे ये जो कर्म इंद्रियों के द्वारा तप किया जाता है तो वाग इंद्रिय का तप यही है। जैसे गीता में भगवान ने कहा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चेव वांग्मयम तप उच्चते, ऐसा भगवान ने कहा। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलना जो सुनने वाले को उद्वेग न करे। हम बोले और सुनने वाले को उद्वेग हो जाए तो वो वाणी का तप नहीं है। अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय और हित, तीनों तीनों साथ में हो, सत्य भी हो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो, ऐसे वाक्य का उच्चारण करना ही वाणी का तप है। देखिए बिल्कुल मौन हो जाना वो वाणी का तप नहीं है। लोग सोचते हैं कि बोलना बंद कर दो, बोलना बंद करना वाणी का तप नहीं है, किंतु सत्यम प्रिय और हितकारी बोलना है वो वाणी का तप है। देखिए यदि मौन हो जाने मात्र से ही जो वाणी का तप हो जाता, आचार्य शंकरानंद जी कहते हैं तो पशु भी मौन हो जाता, पशु हो जाते हैं, किंतु वो यथार्थ तप नहीं है। यद्यपि बिल्कुल जो असद अभिभाषण कर रहा है उनके लिए तो वो भी आवश्यक है, गलत बोल रहा है इसके वजह यदि नहीं बोले तो ही वो अच्छा है, किंतु इससे आगे यदि कहा जाए तो वाणी का तब वो है अनुद्वेगकारी वाक्य का उच्चारण, और वो उच्चारण सत्य प्रिय और हितकारी हो। अब वो सत्यम प्रिय और हितकारी वाक्य क्या हो सकता है, तो कि स्वाध्याय व्यसनम, ये वेदांत वाक्य है वो सत्य है प्रिय है और हितकारी है, उसका उच्चारण। यानी इससे आगे कुछ न हो सके तो उपनिषद का पाठ करते रहना ही समझ लो कि वाणी का वो तप है। उपनिषद का पाठ करते रहना वो वाणी का तप है। यदि वो पाठ होता रहे तो वो जो पाठ है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, बताइए। अनुकूल है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम पाठ करते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्या मत आए समझ में, पहले दफे जैसे करते ही समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति ड्राइविंग सीखता है तो जैसे बैठे ड्राइविंग सीट के ऊपर तो तुरंत थोड़ा ना वो सीख जाता है, धीरे धीरे धीरे अभ्यास करता रहता है तब जाकर के वो उसमें उनका प्रावीण्य आ जाता है। फिर वो ड्राइविंग करते करते समय बात भी करता रहता है पर उनका ध्यान आगे की ओर रहता है। इसलिए पाठ करते ही रहना, गीता का पाठ करते ही रहना, उपनिषद का पाठ करते ही रहना, ब्रह्म सूत्र का पाठ करते ही रहना, ये वाणी का तप है। इससे वाणी है ना वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाती है। और यहां भावना यही की जा रही है, मम अंगानी, उसने सबसे पहले बताया वाक आप्यायन्तु, ब्रह्म ध्यान के अनुकूल मेरी वाणी हो जाए। ये वाणी का सामान्य तप तो यह है कि हम पाठ करते रहे, कभी पाठ को छोड़े नहीं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiri Ji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: काम की वैसे भी देखो कामनाएं जो होती हैं, एक तो काम वो है ही जिस शब्द में ये रूढ़ है उसमें तो झगड़े हैं। कितना भी कोई ये सोचता रहे उसमें थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है कि झंझटों से बच गए हैं, लेकिन फिर उससे दुगना होकर तनाव में आते। बाकी जो कामनाएं हैं किसी की, जैसे मेरे मन में कुछ है, मैं किसी से कुछ मांगने गया हूं, तो कामना की ये विशेषता होती कि अगर तो मैं किसी से मांगने गया हूं कुछ और वो मुझे मिल जाए, तो मिलने के बाद तुरंत अगले दिन से प्यार में कमी आ जाती है। जो पहले प्यार था वो कम हो जाता, जिसने दिया उसकी नजर में भी अब मैं पहले जैसा नहीं रहा जैसे पहले था जब तक नहीं लिया था कुछ, और मेरी नजर में भी यह हो गया कि मैं मांगने वाला था उससे मांगा। और धीरे धीरे फिर आदमी अगर नहीं भी दे पाया या मांगने में, मांगते ही प्यार खत्म होता है। अगर मिल जाए तो मैं एक दिन बहुत प्रशंसा करूंगा कि वहां गया था, जाते ही उसने मुझे दे दिया, अमुक ने मना किया था उसने दे दिया, लेकिन अगले दिन से खत्म। और अगर वो पहले दिन ही मना कर दे तो उसी दिन से खत्म। अगर मिल जाए तो धीरे धीरे खत्म होगा, अगर नहीं मिला तो तुरंत खत्म हो गया। तो इसलिए ये काम या कामनाएं संबंधों को तोड़ती ही हैं, ये कभी भी बनने नहीं देती। तो उन्होंने फिर क्रोध से कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह पैदा हुआ और मोह से स्मृति का नाश हुआ। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि के नाश से सब। यहां पर सम्मोह अर्थात पूरी तरह से मोह। मोह का मतलब होता है देखो, काम जहां होता है जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम तो नहीं होता लेकिन हम बोलते हैं कि बड़ा प्रेम है, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां क्रोध आता है वहां स्वयं सोच लो वो प्रेम नहीं काम है। जहां प्रेम होगा वहां क्रोध का कोई मतलब नहीं है। बुद्ध के मन में प्रेम है, उसे कभी क्रोध नहीं आएगा। गुरु नानक देव के मन में प्रेम है, उन्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव के मन में प्रेम है, उन्हें कभी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रेम। हम जिसे प्रेम समझते हैं और रोज झगड़े में हैं, तो हमें थोड़ा स्वयं पर विचार कर लेना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वस्तुतः ये प्रेम है, क्योंकि प्रेम और क्रोध ये दो चीजें तो कभी हुई नहीं। प्रेम के सामने तो क्रोध तिरोहित हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। कोई क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति भी आया है कभी बुद्ध के सामने तो क्रोध खत्म हुआ है, वो नमस्कार करके ही चला गया। तो जिसे हम काम कहते हैं, प्रेम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन वो काम का एक काम ही है ऐसा मान। काम से भी बढ़कर एक अधिक जिसको हम और प्यार कहते हैं उसको मोह कहते हैं। ये काम से भी थोड़ा अधिक खतरनाक मोह जो है। मोह स्मृति को नष्ट करेगा। देखो मोह में और काम में आप ऐसे अंतर समझ लो कि काम हमारे किसी उद्देश्य में कोई अड़चन आए तो क्रोध होता है। जिस वस्तु की हमें कामना है, जिस चीज को हम चाह रहे हैं, काम से क्रोध क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हम किसी को चाह रहे हैं, बीच में अड़चन आ गई तो क्रोध पैदा हुआ। अड़चन दूर कर दो, क्रोध नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बड़ा किसी को गुस्सा है किसी बात पर आ रहा, वो काम आप ना करो, बात खत्म हो गई, क्रोध खत्म हो जाए। मोह खत्म नहीं होता, मोह की कोई सीमा नहीं है। ये कहां खत्म होगा? क्योंकि मोह में हम किसी दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहते हैं। किसी से हम सुख भी लेना चाहते हैं लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार उसे ढाल दें, और ये कभी संभव नहीं है। हम कितना भी करते रहें, देखो जिससे भी आपको कहते तो हम उसको भी प्यार ही हैं। जैसे काम को भी प्यार ही कहते हैं, शब्द हमारे पास मोह के लिए भी प्यार का है। लेकिन फिर भी जिनका थोड़ा सत्संग से या शास्त्रों से थोड़ा संबंध है, वो इस बात को ध्यान में रखें कि प्यार शब्द के आते ही आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ध्यान कर लें, गुरु नानक देव का कर लें, ज्ञानेश्वर महाराज का कर लें। इन लोगों में प्यार था और उनका प्यार अंत में भाव में बदल गया, ईश्वर से जा मिले। हम जिसको प्रेम कह रहे थे, प्यार कह रहे थे, वो असल में काम था, इसलिए उसमें से क्रोध पैदा हुआ। और क्रोध तो भावती सम्मोह। जब हमारी वो अड़चन बार बार पड़ती है, दूर नहीं होती, और हम भी उसको जैसे कोई बेटा है कहना नहीं मानता या आपके अनुरूप नहीं चलते, अब आपका जो उसके प्रति प्रेम या मोह वो तो बहुत अधिक हो गया। अब क्रोध तो हट गया, क्रोध इसलिए कि वो बार बार कहने पर भी नहीं मान रहा। बार बार कहने पर जो क्रोध का कारण था उस चीज को हटा दो तो क्रोध हट गया। जब वो बात बीच में हटी नहीं रही तो वो मोह का रूप धारण कर लेता। मोह का अर्थ होता है कि पूरी तरह से शास्त्रों में तो काम के लिए आया कि काम पागल बना देता है व्यक्ति को और मोह अंधा बना देता है। पागलपन क्षणिक भी होता है, थोड़ी देर का ठीक भी हो जाता है। अंधापन तो फिर रोशनी को देख ही नहीं सकता, वो कभी फिर लौट के यथार्थ को देख नहीं पाता। मोह में यथार्थ को नहीं देख पाते, क्योंकि मोह से स्मृति नाश होगी। थोड़ा इस बात को आप ध्यान में रखें। स्मृति कहते हैं, देखो एक बुद्धि शब्द यहां आया, बुद्धि प्रणश्यति। बुद्धि में तीन शब्द छुपे हुए हैं, जैसे अंतःकरण में हम तीन ले लेते हैं ना, चार को मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण बन गया। तो बुद्धि जिसको हम कहते हैं उसमें स्मृति, कल्पना और बोध, ये तीन शब्द हैं, इनको मिला के बुद्धि कहते हैं। बोध कहते हैं वस्तुओं को समझने की ताकत, कि कोई किसी ने समझाया तो हमारी समझ में कितना आया। स्मृति कहते हैं जो हमने समझ लिया और अनुभव में भी आ गया वो फिर याद रहता है, उसको स्मृति कहते हैं। जो समझ भी लिया और अनुभव में नहीं आया वो याद नहीं रहेगा, वो रट लिया था हमने थोड़ी देर के लिए, जैसे जब दसवीं पास की थी हमने या इंटर पास किया था या बीए में थे तो उस समय बड़े नंबर आए, लेकिन आज याद भी नहीं वो सब्जेक्ट क्या था, उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, तो वो थोड़ी देर के लिए रट लिया था, वो स्मृति में नहीं रहे। लेकिन जानने के बाद जो अनुभव में भी आ गया वो मेरी स्मृति में, वो मुझे याद है। तो बुद्धि के तीनों ही काम होते हैं, एक हिस्सा उसका स्मृति कहलाता है जो पिछला स्टोर हाउस नॉलेज का, एक ये है जो नया हम अभी सीख रहे हैं, और एक कल्पना। कल्पना का अर्थ होता है कि जो पहले का जाना हुआ और अब जो देख रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर जीवन के लिए उपयोगी कुछ और बना लेना। उदाहरण दिया हमारे उपनिषदों में, उस उदाहरण को आधुनिक ढंग से कहें तो जैसे आज से कोई 40 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले जब हम लिखते थे तो कलम द्वात ये अलग अलग होते थे, एक पेन होल्डर होता था, एक द्वात होती थी, उसमें स्याही डालते थे, फिर उस स्याही में पानी डालते थे, उसको ठीक से मिलाते थे और इधर उसको लगाना बीच में, फिर उसका लिखना। लेकिन फिर किसी व्यक्ति ने स्याही और पेन को इकट्ठा कर दिया तो उससे पेन बन गए, पार्कर बन गया, वो बन गया। स्याही उसी में ही रहती थी, अलग नहीं रही, लेकिन स्याही फिर भी भरनी पड़ती थी, बीच में ट्यूब थी एक वो था। इसको देखकर फिर किसी ने और आगे कल्पना की तो बाल पेन बना दी, अब स्याही भी अलग नहीं है, ना स्याही अलग ना उसकी निब भी नहीं है, नहीं तो पहले निब लेनी पड़ती थी, निब अलग से लो, ट्यूब अलग से लो, ये लो। तो ऐसा चलता रहा बहुत समय तक। शहरों में हो सकता है कि ये बहुत पहले से बाल पेन आ गए हों, लेकिन गांवों के जिनकी अनुभव है वहां मुश्किल से भी 15 साल पहले की बात है कि यह बाल पेन के ये सारा इकट्ठा हो गया। ये इसको कल्पना कहते हैं। तो बुद्धि में ये तीनों बातें होती हैं, लेकिन इसका आधार सारे का स्मृति है, इसलिए स्मृति के नष्ट होते बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी टिकेगा नहीं, ऐसा ये सिद्धांत है और ये बात ठीक भी। यहां ये जो उन्होंने कहा ना कि उससे क्या होगा सम्मोहन से, मोह का अर्थ ये हुआ कि हम जो जहां से सुख नहीं मिलता वहां सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अपने अनुरूप, कि मेरा जैसा मैं चाहता हूं ये वैसा हो जाए। मोह में व्यक्ति, देखो प्रेम में दूसरे का ध्यान रखा जाता है, मोह में अपना ही होता है, दूसरे का नहीं। जहां प्रेम होता है वहां हम दूसरे का ध्यान रखते हैं, दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अनुरूप हम आचरण करते हैं जिससे वो खुश हो। प्रेम में दूसरे को खुश करने की भावना होती है, या ऐसा दान कह लो, प्रेम दान है, देने का नाम है, और मोह लेने का नाम है। मोह में हम दूसरे को नहीं समझते, हम अपने को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तेरा बाप हूं तू मेरी बात हूं, अब ये कोई तर्क है तो मैं तेरा बाप, ये कोई तर्क नहीं है। मतलब खाली ये कि मैं तेरा बाप हूं, उपनिषद में बहुत बढ़िया बात है। देखो ये जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष के कोई पौध नहीं होती, पीपल का वृक्ष इनवेरिएबली अनिवार्य रूप से कौवे की बीट से इसका बीज जाता है और कौवे की बीट से पीपल पैदा होता है। इसलिए पीपल दीवारों पर भी होता है, छत पर भी कई जगह हो जाता है, घरों की दीवारों पर प्राणी देखो तो पीपल उगा हुआ। तो अगर कौवे की बीट से पीपल पैदा हो गया और कौवा पीपल का बाप तो बना नहीं, ये कहें कि कौवे ने पीपल को पैदा किया, तो फिर तो पीपल से ज्यादा उसके पिता की पूजा होनी चाहिए। तो शास्त्र ये कहता है कि आप एक माध्यम बने, किसी का कोई पैदा हो गया आपके थ्रू, अब ये कोई तर्क थोड़े ही है कि मैं तेरा बाप हूं इसलिए तो मेरी बात सुन, मैं सुपीरियर। प्रेम में दूसरे को समझने का प्रयत्न है, मोह में अपने को आरोपित करने की वृत्ति कि इसलिए तो मेरा कहना मान, उसमें कोई तर्क की बात नहीं। और मोह से समृति विभ्रमा, समृति गई, जब समृति ही गई तो फिर कल्पना शक्ति काहे की रह गई, वो तो साथ में खत्म। देखो एक और बहुत बढ़िया बात गीता से ही हमें मिलती है कि मोह में समृति नष्ट हो जाती है, प्रेम में समृति की पुष्टि होती है, समृति। और गीता के अखीर में अर्जुन भगवान से कहते हैं नष्ट मोहा समृतिर्लभ्व। देखो कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही, वो कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया है, समृति जागृत हो गई है, त्वत् प्रसादात् मे अच्युता। हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, मेरे मोह खत्म हुआ और समृति की पुष्टि हो गई। प्रेम से समृति की पुष्टि होती है, मोह से समृति का नाश होता। जहां मोह से समृति का किसका नाश होगा, जिसमें मोह है, जिसके प्रति मोह है उसका तो कुछ नहीं नाश होगा। अगर मेरे में मोह है किसी के प्रति तो समृति मेरी नाश होगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा जिसके प्रति मेरा मोह, वो तो वैसे का वैसे ही। और प्रेम अगर होगा तो मेरी समृति भी पुष्ट होगी और उसकी समृति भी और बढ़ेगी, ये प्रेम की विशेषता है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने ये बात बता दी कि उससे क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात समृति विभ्रम, उसी से समृति खत्म, और समृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। समृति के विभ्रम होते ही बुद्धि का नाश हुआ, अर्थात स्मरण शक्ति भी गई, ग्रहण शक्ति भी गई, कल्पना शक्ति भी गई। जब ये तीनों ही शक्तियां गई तो फिर बाकी कुछ बचा ही नहीं, इसी को ही उन्होंने व्यक्ति का नाश माना कि उससे फिर सर्वनाश हो गया। तो सर्वनाश तक पहुंचे कहां से, बड़ी छोटी सी बात से कि किसी को अच्छा कह बैठे, किसी को अच्छा समझ बैठे, किसी को सुंदर समझ बैठे और फिर उसके प्रति कामना पैदा हुई, फिर हमने उसके लिए प्रयत्न किए, फिर उसके रास्ते में ये आया, फिर रास्ते में वो हुआ, फिर रास्ते में ऐसा हुआ, फिर ये। अब ये भी प्रश्न होता है कि फिर ये जब एक क्रम बना हुआ है तो सावधान कैसे रह सकते। इसके लिए ये जरूरी है कि जीवन में किसी न किसी नियम का कट्टरता से पालन करना, और उन नियमों में एक नियम यही है, जैसे हमारे त्रिकाल संध्या का एक नियम था कि कम से कम 3 बार तो भगवान को याद करना ही। जो साधक थे वो 4 बार करते थे, आम आदमी के लिए 3 बार का था। 4 बार ये होता था कि मध्य रात्रि को भी एक बार नाम ले लेते थे भगवान का, प्रातः दोपहर सायं और मध्य रात्रि। इसीलिए चारों पहरों में ये जो बनाए गए थे 24 घंटे में 6-6 घंटे के बाद सुमरण करना भगवान का। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति सोते समय ईश्वर का स्मरण करते हुए सो जाए, स्मरण का अर्थ है जो जो भी आपका मंत्र है, किसी का कोई गुरु मंत्र है तो ठीक है, नहीं है कोई गुरु मंत्र तो महामंत्र हरे राम राम राम हरे हरे करते सो जाओ, नहीं है तो गायत्री का जाप करते हुए सो जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते सो जाओ, और केवल ओम का चिंतन करते हुए सो जाओ, और सुबह उठते ही सबसे पहले फिर उसी का स्मरण करो। हमारे ऋषियों का ये कहना है और जिन्होंने ये किया है उनका अनुभव है कि अगर कोई भी व्यक्ति 40 दिन तक इस नियम का पालन कर ले तो वो बुराई की तरफ जा नहीं सकता, उसका जीवन मर्यादित हो जाता है। आप सोते समय भगवान का याद करते हुए कोई भी मंत्र जो भी आपके पास है, और आपके सबसे अच्छे मंत्र उपनिषदों के ये शांति पाठ, इनसे बढ़िया कोई और है नहीं, मां विद्विषा वही करो आप, या भद्रम करने भी वाला करो, या मेरी वाणी पवित्र बोले, मेरे कान अच्छा सुने, ऐसे ऐसे जो भी। लेकिन फिर भी सुबह उठकर और एक बार दोपहर को और फिर शाम को, दोपहर के लिए निश्चित रूप से एक समय हो कि मैंने इतने बजे जरूर एक बार ये मंत्र करना है। कोई भी समय आप ये रख लो कि 1 बजे या 12:10 पर करूंगा। बड़ी विचित्र बात है कि इसको करने में ही आपको कई दिन निकलेंगे, कभी वो टाइम पर भूल जाएंगे बात को, कभी फिर वो करेगा कि आज रह गया, कभी फिर कुछ करेंगे, और फिर सोते हुए याद करके सोएं और जागते हुए भी उसको दोहरा लें, ये तो साधना ही कंप्लीट होगी, क्योंकि सोते हुए याद ही नहीं रहता कि उसको करना था, कुछ और ही करते करते सो गए, और उठते ही कुछ और याद आ जाएगा कि वहां फोन करना था, वहां जाना था, ये करना। जब आप वो कर बैठेंगे फिर याद आएगा कि मुझे ये करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर आप उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि साधना तो यही है और साधना कुछ नहीं, साधना कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, जीवन को मर्यादित कर लेना, किसी एक नियम को अपनाकर जीवन में घुमा फिराकर अपनी वृत्तियों को एक बार जब हम मर्यादित कर लेते हैं तो फिर वो स्वतः चलती, फिर उसमें कोई उनको नहीं कोई रोक सकता। एक बार बस शुरू करने की बात, आप ऐसा ही समझ लो कि कोई पुरानी सी गाड़ी, बहुत पुराना मॉडल, और उसके सारे इंजन की जिन भी खराबी हो और गड्ढे में भी गिरी हुई हो, अब उसको चलाने के लिए तो उसमें पेट्रोल भी डालोगे, वो भी करोगे, धक्के भी लगाओगे, हो सकता है वो ट्रैक्टर से खींच के उसको बाहर लाना पड़े पहले, और जीटी रोड पर आके फिर वो चल पड़ेगी, फिर उसमें कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे ही हमारा मन जो है, जो इतने विषयों में घिरा हुआ है, रूप रस गंध स्पर्श के जो चक्कर में पड़ा हुआ है उस गड्ढे में से, उसको उसमें से निकाल कर, और फिर वो भी कोई आज का नहीं है मन, हम जितनी भी जितनी जितनी हमारी उम्र है बस उतना उतना ही समझ लो, कहने की बात है कि मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ, वास्तविकता यह है कि उतनी चालाकी, उतनी बेईमानी, उतनी हेरा फेरी के गुर मुझे ज्यादा आ गए, छोटा होता तो शायद मैं संभल जाता। तो इसलिए मैं मस्जिद तो बना दी, पल भर में इमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पाती था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद बनाने में तो 2 मिनट लगते, अभी चंदा इकट्ठा करो हनुमान जी की फोटो इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन मन को पवित्र करने में वो बरसों बीत जाती, वो मुश्किल होता है। ये चिन्ह बनाना, मूर्तियां बनाना, वो करना, उनका वो कर देना, इसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगती। तो बात यही है कि उस मन को करने के लिए ये जो मंत्र है या नाम है जिसको आप नाम कहते हो, यही वो एक साबुन है जिससे मन को धोया जा सकता है। तो सिंपल साधारण 5 बार अगर कोई राम राम कहने का भी नियम ले ले कि टाइम पर जरूर, इतने सुबह इतने बजे, दोपहर को इतने बजे, शाम को इतने बजे, ऐसा भी कोई नहीं कर पाता, कितना आसान काम है। और फिर बड़ी बड़ी साधनाओं की तो बात ही छोड़ो कि हम वो करेंगे, और ये जो योग के चक्र के मूलाधार चक्र कहाँ है, अधिष्ठान चक्र कहाँ है, नाभि चक्र कहाँ है, वो कॉपी पे लिखते रहो सारी उम्र, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कि कितने ये शुभ इच्छा सुविचार ना तनुमानता असन शक्ति पदार्थ भावनी प्रियदा आऊई माँ ओम की 5 मात्राएं, 8 मात्राएं, 4 मात्राएं, हमारे शिव पुराण में ओम की 16 मात्राएं जो योगियों का है, और फिर नाग तक पहुंचे, उसमें समझाने में समझने में सब ठीक है, क्यों सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन लाभ कुछ नहीं है। लाभ तो केवल भगवान के नाम में, और वो अगर सचित बने, रोज का बन जाए, नियम पूर्वक अगर हम उस नाम को लेते हैं, दिन में अगर 3 बार भी लेते हैं तो बन जाता है व्यक्ति, उसमें बुराइयों की तरफ चिंतन जाना कम हो जाता है। अगर बिल्कुल खत्म भी नहीं होगा तो कम से कम कम ही हो जाएगा, मरते हुए तो शांति से जाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि मरते हुए वासनाएं फिर पीछे यहाँ कहीं पड़ी रह जाएं। अगर 3 बार भी हम नाम लेना जान जाएं तो क्या पता है भगवान की कृपा से उन तीनों किसी समय में आखिरी दम हो हमारा। अगर वो भी नहीं है तो जो चिंतन इस समय चल रहा है उसकी तो फिर वो तो हम तो वहां तक पहुंचे हुए हैं, बुद्धि नाशा प्रणश्य थी, वो पहले वाली तो बात ही बहुत पहले की थी जो करनी थी हमें, हम तो अब इस आखिरी स्टेज पे खड़े। तो इसलिए आखिरी स्टेज पे भी सहारा वही है, आप ईश्वर के नाम को पैराशूट समझ लो कि हवाई जहाज से छलांग लगा देते हैं लोग, और उससे फिर भी कहीं ना कहीं धरती पर आके बच ही जाएंगे, अब फिर भी कहीं जंगल में जाके गिर गए तो बात दूसरी है, लेकिन बचने की संभावना काफी है।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: मन्धता मूर्ध्नो विश्वास्यावागताः अग्नेवीवा स्वधाबारा अस्मभ्यामुताये माहे देवो ह्यासीनो दृशे।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: திரு அம்மானே கல்லாமணத்து என்ற பாடல், ராகம் ஹம்சநாதம்.

0: अपीतकुचाम्बास्तवः सम्पूर्णः।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, यू आर अबाउट टू लिसन शिव स्तोत्रास। द टाइटल इज मार्ग सहाय लिंग स्तुति ऑफ श्रीमद् अप्पय्य दीक्षितार्, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एम गोकुलकृष्ण अय्यर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
0: श्रीमद् अप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचिता मार्ग सहाय लिंग स्तुति। पयो नदी तीर निवास लिंगम बालार्क ककोटि प्रतिमं त्रिनेत्रम्।

अंगम गजेन्द्र चर्मांबर भूषितांगम गौरी मुखांभोज विलोल भृंगम वंदा महे मार्ग सहाय लिंगम सुकंकणी भूत महाभुजंगम संज्ञान संपूर्ण निजांतरंगम सूर्येन्दुबिंबानल भूषितांगम

0: महेशलिङ्गम् सामप्रदं सौम्यकटाक्षलिङ्गम् वामाङ्गसौन्दर्यविलोलिताङ्गम् वन्दामहे मार्गसहायलिङ्गम् पञ्चाक्षरीभूतसहस्रलिङ्गम् पञ्चामृतस्नानपरायणाङ्गम् पञ्चामृताम्भोजविलोलभृङ्गम् वन्दामहे मार्गसहायलिङ्गम् वन्दे सुराराधितपादपद्मम् श्रीश्यामवल्लीरमणं महेशम् वन्दे महामेरुशरासनं शिवम् वन्दे सदा मार्गसहायदेवम् इति श्रीमद्भारद्वाजकुलजलधिकौस्तुभ नित्याग्निहोत्रि मीमांसकमूर्धन्य श्रीकण्ठमतप्रतिष्ठापनाचार्य चतुरधिकशतप्रबन्धनिर्वाहक श्रीमदद्वैतविद्याचार्य विश्वजिद्याजि श्रीरङ्गराजाध्वरिवरसूनु श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्ररचिता मार्गसहायलिङ्गस्तुतिः सम्पूर्णा।
1: ओम नमः शिवाय। डियर यूजर्स ऑफ shaivam.org, वी आर वेरी मच डिलाइटेड टू लेट यू ऑल नो दैट ड्यू टू द शावर ऑफ ग्रेस फ्रॉम अलमाइटी लॉर्ड शिवा एंड द कंटिन्यूस सपोर्ट फ्रॉम एस्टीम्ड यूजर्स लाइक यू, अवर shaivam.org वेबसाइट हैड पास्ड 26 सक्सेसफुल इयर्स ऑफ सर्विस इन द वर्ल्ड ऑफ शैवम एंड इट इज ऑल सेट टू सस्टेन द सेम विद लॉट मोर न्यू फीचर्स इन द फोर्थकमिंग इयर्स एज वेल। एडिंग टू दैट, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of shaivam.org, the following is Shukla Yajurveda Madhyandina Shaka Adhyayam 10.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

द्वन्द्वस्य किं वोचितम्। द्वन्द्वस्य किं वोचितम्। क्या है? अच्छा, पाठ भेद है, ठीक है।

दुका विहरणम् शंभो सदांगी कुरु। आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव द्वारा किए हुए कर्म प्रति ये संकेत करते हैं, वास्तव में आप बहुत कठिन काम करते हो। आपके लिए कुछ मदद चाहिए। बहुत मदद तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जीव हूं, एक काम, एक मदद, एक सहयोग मैं कर सकता हूं जो आपके लिए बहुत उपकारी होगा। वक्षस्ताडनमंत कस्य कठिना। संसार में कोई भी न कर सके वो काम आप करते हो। सबसे कठिन कोई इंसान जगत में पैदा हुआ, कठोर, कठिन है ना, कठिन कहो या कठोर कहो, गुजराती लोग कठण बोलते हैं, कठिन कहो, कठोर कहो, कठण कहो, बात एक ही चीज है। संसार में कठोर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसका नाम है यमराज, है ना। उसके हृदय में, उसके जीवन में दया करुणा जरा भी नहीं है। सभी लोग यही कहते हैं कि बहुत कठोर है,

0: किसी का पति मर जाता है तो पत्नी कहती है कि कैसा कठोर है, किसी का बेटा मर जाता है तो मां कहती है कि यमराज कैसा कठोर है, किसी का बाप किसी की मां मर जाती है तो कहते हैं लोग यमराज कैसा कठोर है, कठोर दिल वाला है ना। इतने से छोटे से बच्चों को अनाथ छोड़कर जानते हुए भी है उन बच्चों को अनाथ बनाकर उसकी मां को ले गया, कैसा कठोर दिल वाला है, कहते हैं कि नहीं। इसलिए सबसे कठोर व्यक्ति है तो यमराज है भाई। और यही कारण है कि आज तक उसके छाती में किसी ने लात मारने की हिम्मत नहीं की है, की है किसी ने साहस किया उसके छाती पर लात मारने का, और वो काम आपने किया है। किसने? शिवजी ने कहा किया है भाई। विचार करो कि उनके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा, हम लोग बचपन में ये दिवाली के बाद भैया दूज आता है ना, भैया दूज के दिन बहन भाई को टीका लगाती है, बहन अपने भाई को टीका लगाती है, उसी को भैया दूज कहते हैं। और पहाड़ में ये चलन है, ये संस्कृति है कि टिक्का लगाने से पहले अच्छी तरह नहा लो, फिर सरसों का तेल शरीर में लगाओ, फिर उसके बाद टिक्का लगाओ। टिक्का लगाने के बाद खाने के लिए कई चीज बहन देती है, उनमें से एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अनिवार्य देना ही पड़ता है उस दिन, वह है अखरोट, समझे ने? उसका नाम है अखरोट, अखरोट तो जानते हो ना। अब वो अखरोट भी आजकल जो आपके यहां आता है ना, वो तो बहुत सॉफ्ट अखरोट आता है, उसके छिलके बहुत नरम होते हैं, हाथ से दबाओ तो भी मूंगफली की तरह फूट जाता है। और पहाड़ में फलने वाला जो अखरोट है, लोकल अखरोट, वो तो इतने मोटे छिलके होते हैं और इतने कठिन होते हैं, तो बहन जब टिक्का लगाने के बाद अखरोट देती है कि इसको फोड़ के खाओ, तो हम लोग अखरोट फोड़ने के लिए इतने परेशान होते थे, फूटता ही नहीं था, पत्थर के ऊपर रखा और दूसरा पत्थर मारा तो वो छिटक के चला जाए, कहां पहुंच जाए, फूटे ही नहीं, क्योंकि एक तो हाथ में तेल लगाया हुआ होता है, तेल भी उसमें होता है, तो वो इतना चिकना हो जाता है, मारे पत्थर छिटक के चला गया, फिर खोज खाज कर लाया, फिर पत्थर के ऊपर रखा, दूसरा पत्थर मारा, फिर छिटक गया उधर। बड़ी मेहनत से उसको कदाचित फोड़ भी लो तो लोकल अखरोट के अंदर जो खाने की चीज है ना, वो नहीं के बराबर ही होती है, और वह भी इतना उसमें फंसा हुआ होता है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल लगता है, तो ऐसे निकलता नहीं है। फिर एक तिनका ले लेते थे, सुई ले लेते थे, उसको निकाल के खाओ, हे भगवान, मुसीबत ही है। उस कठोर जो अखरोट है उसका, उससे भी ज्यादा कठोर तो यमराज का दिल है, छाती है भाई। और ऐसे यमराज के छाती पर हे शिव आपने ही लात मारी है और किसी ने लात नहीं मारा है। वक्षस्ताडनम अंतकस्य, अंतकः माने यमराज, अंतम करोति इति अंतकः, सभी के जीवन को अंत करने वाला होने से यमराज का नाम है अंतक। उस अंतक के हृदय में लात मारी है भगवान शिव ने, बस और किसी ने नहीं मारा आज तक इतिहास में। पुराण में प्रसंग आता है, मार्कंडेय ऋषि थे, मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय, बचपन में बड़े खेलने में मस्त थे वो, जैसे हम लोग खेलते रहे उसी तरह वो भी खेलने में मस्त थे। एक बार नारद जी घूमते हुए गए और जाकर मार्कंडेय ऋषि को कहा, ए क्या करता है, खेलता रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले और क्या करना है, ये जीवन बचपन का जीवन खेलने के लिए तो है, खाने के लिए तो है, खूब खेलो और खूब खाओ, खूब खाओ और खूब खेलो। अरे शादी विवाह हो जाने के बाद न खाने को मिलेगा न खेलने को मिलेगा, है शादी के बाद तो खेलने को मिलेगा, हाँ रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम लोगों को थोड़ा हंसने की बात कर देता हूं भाई, कहते हैं एक माता पिता थे, उसकी एक लड़की थी, ये हंसने की बात है, जवान हो गई, माता पिता को अपने कन्या प्रति चिंता हो गई कि इसके समय में शादी कर देना चाहिए। लड़की की मां ने कहा उसके पिता को कि अरे सुनो हमारी बेटी अब जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कर देना चाहिए भाई समय में ही, जमाना खराब है, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं क्या हो जाए कब, इसलिए समय में ही शादी कर देनी चाहिए। बोले ठीक कहा तुमने, कर देनी चाहिए, इसके लिए कोई योग्य पति वर खोजना पड़ेगा भाई। बोले चलो खोजते हैं। उस कन्या के दोनों माता पिता कन्या के लिए वर खोजने के लिए गए, पहले एक गांव में गए, एक लड़का था उस गांव में, उसको देखा, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य था, अब उसकी लड़की थोड़ी पढ़े लिखे की थी, कहा कि हमारी बेटी थोड़ी पढ़े लिखी है, तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्खा है, काम नहीं बनेगा, छोड़ दिया। दूसरे गांव गए, वहां एक लड़का मिला, उसको देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो था, उसके लड़के के बराबर पढ़ा लिखा तो था, लेकिन बहुत ही काला था, मेरे से भी गया काला, गुजरा काला था वो, बहुत काला था, ब्लैक था बिल्कुल। बोले ये तो ठीक नहीं, हमारी लड़की तो गोरी है, ऐसे काले से क्या ब्याह करना है, चलो छोड़ दो। फिर तीसरे गांव गए, वहां गए तो लड़का ठीक था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, लेकिन बहुत गरीब था, तो ऐसे को लड़की देंगे तो पालेगा कैसे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ஓம் நம சிவாய.
2: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ தர்மானந்த்ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.

हम लोगों ने अभी बड़ी सुंदर बात श्रवण की, प्रातस्मरणीय सुनाम धन्य जगत वंदनीय पूज्य चरण अखंडानी महाराज जी के श्री मुख से एक एक सूत्र वाक्य जिसके हृदय में भगवान के चरित्र के विषय में प्रीति न हो वह हृदय हृदय नहीं पाषाण है, उसको हृदय नहीं कहना चाहिए, वो हृदय कमल नहीं बल्कि पाषाण है। और पाषाण जब चट्टाने टूटती हैं तब जाकर उसमें से झरना निकलती है, ऐसे नहीं निकलती। तो आज यहां पर भी वही लीला है जो पूज्य महाराष्ट्री ने सूत्र पाठ किया। यदि आपका हृदय कमल है तब तो ठीक है, नहीं तो भगवान शंकर को तांडव लीला करनी पड़ती है। जब तांडव लीला करते हैं तो पाषाण भी चकनाचूर हो करके वहां से फिर झरना निकलती है। और तांडव शब्द बनता भी है तड़ी आघाते धातु से, तड़ी आघाते है क्योंकि यदि धातुओं को नूम हो जाता है और आगे वृद्धि होकर तांडव बनता है। इसके पूर्व में भगवान ने पहले नीलकंठ लीला बतलाया, इस नीलकंठ लीला के द्वारा अविद्या का अध्यारोप। इसके बाद में चौदहवें पंद्रहवें श्लोक में अविद्या का अध्यारोप के बाद में काम दहन लीला। जैसे संसार में जब कोई आता है तो आने के बाद अविद्या का आरोप होता है, ये प्रत्येक प्राणी के जीवन की घटना है। जब भी कोई जन्म लेता है तो वह निर्गुण निर्विशेष रूप से रहता है। दार्शनिक सिद्धांत भी है, उत्पन्नम क्षणम अगुणम निष्क्रियम तिष्ठति। और इस बात को न्यायिक नहीं बल्कि वेदांती मानते हैं कि प्रथम क्षण में सारे ज्ञान निर्गुण निष्क्रिय होते हैं, बाद में उसमें विशेषता आती है। जैसे कुछ देखेंगे तो यह कुछ है ऐसा होता है, पहले यह कुछ है, इसके बाद उसकी विशेषता मालूम पड़ती है कि यह घट है, पट है, या जो है स्वरूप है या कुरूप है। विशेषता द्वितीय क्षण तृतीय क्षण में आती है। यहां पर भी जब कोई भी संसार में आता है तो निर्गुण निराकार निष्क्रिय, बात में अविद्या का आरोप कर दिया कि तुम यह हो वह हो, मनुष्यत्व का, ब्राह्मणत्व का, समाज का, धर्म का, तमाम आरोप करते हैं, यह अविद्या है। आरोप होने के बाद तदनुसार वह चेष्टा करता है। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण के अनुसार, क्षत्रिय क्षत्रिय के अनुसार, यदि उसको कह दिया कि तुम इस्लाम हो तो उसके अनुसार चेष्टा होगी, क्रिया होगी, प्रवृत्ति होगी। जब उसमें परेशान होता है तब जाकर भगवान काम दहन करते हैं, कामना का नाश। उपनिषद में आता है, वेद व्यास भगवान स्वयं ही कहते हैं, तृष्णाक्षय सेते नारहत षोडशीम कला। एते तृष्णा, ये जो हमारे तृष्णाएं हैं, कामनाएं, इनके क्षीण होने से अनंत सुख की अनुभूति होती है। इस संसार में इतना सुख है, उन सारे सुख को एक तरफ रख दो और तृष्णा क्षय को एक तरफ, वह पलड़ा भारी होगा। इतना सुख तृष्णा क्षय में है। उसी तृष्णा से जब प्राणी पीड़ित होते हैं तो भगवान शंकर ने काम का दहन यहाँ किया। अब काम दहन के बाद फिर आप क्या करते हैं लौकिक व्यवहारिक जगत में, जैसे किसी बच्चे की कामना है कि हमें साक्षर होना है, साक्षर होने के बाद वह अच्छे पद में प्रतिष्ठित हो गया, नौकरी लग गई, धन कमाने लग गया, इसके बाद आप कहते हैं कि अब इसकी शादी ब्याह कर देना चाहिए। शादी ब्याह के पूर्व आप नृत्य करते हैं ना, नाच गा,
ऐसे ही जब यहाँ कामदान लीला हो गई तो भगवान शंकर इस 16वें श्लोक में तांडव नृत्य करेंगे। इस शिव तत्व समष्टि चैतन्य का नाम है, व्यष्टि चैतन्य समष्टि चैतन्य, चैतन्य दो तरह का है। व्यष्टि मतलब कि जो प्रत्येक प्राणियों के अंदर अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, उस अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम है व्यष्टि चैतन्य। और सारे अंतःकरणावच्छिन्न उपाधि में जो चेतन है, अंतःकरण की उपाधि में जो चैतन्य का प्रतिफलन है, उन सब का जो अधिष्ठान, जो सब में मैं कर रहा, उसका नाम है समष्टि चैतन्य। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य के शरीर में अनंत क्रिमियां हैं, परंतु उन सब का अहंकार एक आदमी करता है, मैं। किसी व्यक्ति का नाम श्यामलाल है, वह श्यामलाल अहंकार करता है कि मैं, और उसके शरीर में हजारों रक्त और श्वेत क्रिमियां हैं, आपस में उनका संघर्ष भी होता है। श्वेत कृमि रक्त कृमि का भक्षण करते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं, और रक्त कीटाणु बन जाए तो आदमी बीमार पड़ जाता है। उसमें भी जीव है, परंतु उससे हमको कोई लेन देन नहीं होता। जब बीमार पड़ते हैं तब ख्याल आता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा इंजेक्शन देता है कि श्वेत कृमि बढ़े। इसी प्रकार से यहां पर भी जितने भी चैतन्य है, सबका जो मैं करके अहंकार कर रहा, उसका नाम है समष्टि चैतन्य। तो जब प्राणियों की कामना तृष्णा क्षय हो गई, जैसे आपके लाडले का लाडली का जब नौकरी लग गया, अब विवाह होने वाला होता है, तो आप जो है ना नाच गान सब तमाशा करते हैं, ऐसे भगवान शंकर अब तांडव नृत्य करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी दसम स्कंद के 28वें अध्याय से लेकर जो 32 तक रास पंचाध्यायी है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण महारास लीला तभी प्रारंभ किया जब कामदेव को जो है दूर किया। प्रसंग आता है ना कि जब कामदेव भगवान के यहां पधारा रास के पूर्व, भगवान ने कहा तुम कौन हो, उसने कहा कि मैं कामदेव हूं, जो देवताओं असुरों और मनुष्यों के इंद्रियों को मैं मंथन करता रहता। भगवान ने कहा कि तुम्हारा यहां पर क्या काम है, बोले कि मैं आया हूं कि जरा आपसे भी एक बार कुछ सपना शास्त्रार्थ हो जाए। भगवान ने कहा शास्त्रार्थ हो जाए, परंतु शास्त्रार्थ हमेशा संबल में होता है, तो आप शास्त्रार्थ कैसे करोगे, मैदानी जंग सबके बीच में करोगे या जो है ना किले की लड़ाई, मतलब केवल हम और तुम दोनों ही होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। कामदेव का देखो ये दो का शास्त्रार्थ तो मैं कर चुका हूं भगवान शंकर से, वहां मैं हार गया हूं, इसलिए ऐसी भूल तो मैं करता नहीं। ये दो रहेंगे तो एक प्रबल होगा तो उसको जला देगा, और मान लो मैदान में होगा तो कोई तो बीच बचाव करेगा, इसलिए मैदानी जंग होगा। भगवान ने कहा ठीक है, पर शास्त्रार्थ के पूर्व पहले परीक्षण होता है ये करने में समर्थ है कि नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा जरा मैं देखता हूं कि तुम किस प्रकार से करोगे। जैसे ही भगवान अपने अधरा मृत पर बांसुड़ी पधरा करके अपने तिरछी चितवन से गान प्रारंभ किया, कामदेव वही मूर्छित हो गया। भगवान ने कहा कि तू क्या जो है जंग करेगा, यहां से चल, उसको भगा दिया। तब जाकर महाराज हुआ, एक तो कामदेव को वहां से खदेड़ा, और दूसरी लीला यह भी है कि ये जो काल बल नामक राक्षस है पुराण के अनुसार, उस काल बल को भी भगवान ने
तांडव नृत्य जब महाराज हुआ तब तक उसको दबा के रखा। एक काल बल राक्षस का काम होता है कि प्राणियों को हमेशा काल से बांध के रखना। जैसे कि हम लोग बंबई में पैदा हुए, एक कोई संवत्सर होगा और 100 वर्ष के बाद हम खलास हो जाएंगे, ये सब काल बल करता है। और जब तक काल बल राक्षस अपना काम करता रहेगा तब तक महाराज होना असंभव है। जवानी में कितना आनंद होता है, इंद्रियों का तेज है, सब कुछ है, परंतु आपको पता भी नहीं चलता है, बुढ़ापा तुरंत आ जाती है। ये काल बल के द्वारा बुढ़ापा आती है, आप नहीं चाहते बुढ़ापे को, आपको पता भी नहीं चलता है, पर कब कैसे आप 50 वर्ष के आगे बढ़ गए, वो सब काल बल करता है। तो वहां पर ही भगवान श्री कृष्ण ने काल बल को भी नियंत्रित करके रखा। इसलिए 28वें श्लोक में कहा, भगवान अपि ताह रात्रि, ये ता शब्द बहुवचन है, साते ता जैसे होता ना सहतौते, वैसे स्त्रीलिंग में साते ताह चलता है। ताह रात्रि कहा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका कहा, आगे कहा कि वृक्ष रंतु मनः चक्रे योग माया समावृत, और अंत में भी कहते हैं ब्रह्म रात्रे उपावृत्ते। देखो ब्रह्म रात्र और ता रात्रि से सिद्ध होता है कि वहां 1, 2, 3 रात्रियां नहीं थी। काल बल के नियंत्रण करने से प्राणियों को पता नहीं चला कि कितनी रात्रियां बीत गई। पुराण के अनुसार 43,20,000 वर्ष में आप 1,000 का गुणा कर दो, उतनी जो है ना ब्रह्म रात्रि कहलाती है और उतना ही दिन कहलाता है ब्रह्मा जी का। उतने समय तक जो है उस काल बल राक्षस को भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण ने दबा के रखा, नियंत्रित करके, किसी को पता ही नहीं चला कि महाराज कब तक चल रहा। ऐसे यहाँ पर भी जब भगवान शंकर तांडव नृत्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इसके पूर्व में काम का दहन किया, अब काम के बाद काल बल राक्षस को नियंत्रित करने के लिए यह लीला करने जा रहे हैं, तांडव लीला, ताकि पाषाण भी पिघल जाए। लोग कहते हैं ना कि पाषाण पिघल गया, तो पाषाण हृदय वाले को भी किस प्रकार से आनंद हो उसके लिए भगवान तांडव लीला करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कोई राजा हो, राजा देश की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय करता है, बहुत धन भी खर्च करता है, समय पड़ने पर संग्राम भी करता है, परंतु कोई यदि कहे कि अहिंसा परमो धर्म है, बेचारे क्यों संग्राम कर रहे हैं, लोग जो है मारे जाते हैं, इतना धन खर्च होता है, अहिंसा परमो धर्म, और जब मान लो शत्रु आक्रमण करेंगे तो क्या करेंगे, आप ही कहेंगे कि राजा नपुंसक है, देखो कुछ नहीं करता है, ये भोगी अय्यासी है, चुपचाप पड़ा रहता है, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, राज्य का अधिग्रहण कर लिया। तो कई बार रक्षा के लिए भी संग्राम करना पड़ता है। जो राजा शत्रुओं का दमन करता है या अपने राज्य के अंदर जो कुछ आतंकी है उनसे संग्राम करता है, तो संग्राम संग्राम के लिए नहीं, हिंसा के लिए नहीं है, वह भी अहिंसा के लिए है, शांति के लिए है। ऐसे यहां पर भी जब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं उस समय वामयी विभूता कुछ विपरीत स्थिति संसार की बन जाती है। संसार मान लो चाहे वैकुंठ लोक हो या स्वर्ग लोक हो या पृथ्वी लोक हो, इसकी स्थिति बिल्कुल विलक्षण हो जाती है। जब कोई बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने में कितनी तकलीफ होती है उसे ही मालूम है, उसका लक्ष्य भी है शांति प्राप्त करना, पर शांति प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक किसान खेती करता है पर खेती करने में भी बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, कई बार तो फसल पकने के बाद यदि अचानक वर्षा हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो नष्ट हो जाता है,
ऐसे यहाँ पर भी भगवान शंकर तो प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य कर रहे हैं, परंतु उस तांडव नृत्य से एक विलक्षण स्थिति बन जाती है, उसी का चित्रण किया है 16वें श्लोक में। और इसके बाद ज्ञान गंगा का अवतरण बतलाएंगे, पहले उच्चारण कर लें।

0: पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर तांडव नृत्य प्रारंभ करते हैं तो मही पादा घाता, नृत्य के पहले श्रृंगार बहुत जरूरी होता है। कोई भी जब किसी भी उत्सव में जब नाचता है तो नाचने के पूर्व वह श्रृंगार करता है। अभी आप लोगों ने परसों देखा ना कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, नंद उत्सव हुआ, तो कुछ जो है ना शोभा बढ़ाने के लिए या प्रजा के रंजन के लिए श्रृंगार करना पड़ता है। अब भगवान शंकर का श्रृंगार बड़ा विलक्षण है। चूड़ामणि कृत विधुर, भगवान का जो मुकुट है ना वह मुकुट कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा है। टेढ़े चंद्रमा को तो मुकुट बनाया। चूड़ामणि कृत विधुर वलई कृत वासुकी, और वासुकी कृत को तो भगवान ने जूला में बांध लिया अपने। भव भवत भव्याय लीला तांडव पंडित, इसके बाद भगवान इतने भी उनके गण हैं, उन गणों को निमंत्रित कर लिया हाथ में त्रिशूल। इसके बाद भगवान शंकर तांडव प्रारंभ करते हैं। तो भगवान के तांडव प्रारंभ करने से जो पाद के आघात से पादाघाताद मही संशय पदम सहस्ता ब्रजति अस्थान में की थी। भगवान शंकर का एक नाम है नटराज राज। देखो श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, नटवर बोलते हैं ना, नटवर और नटराज एक ही अर्थ है, पर नटराज राज मतलब एक और राज जोड़ दो तो शंकर अर्थ हो जाएगा। व्याकरण महाभाष्य के पूर्व में एक श्लोक है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौपंच वारम उद्धर तु काम सनकादि नेत्र। भगवान शंकर अपने भक्तों के कामना को परिपूर्ण करने के लिए तांडव नृत्य करते हैं। प्रयागराज में महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे और दूसरी तरफ सनकादि ऋषि भी समाधि लगाए हुए थे। पाणिनि ऋषि की कामना थी कि हमें व्याकरण दर्शन बनाना है तो उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, सूत्र चाहिए, और सनकादि ऋषियों की कामना थी तत्व ज्ञान की। तो भगवान शंकर जब तांडव नृत्य करके नटराज राजो ननाद ढक्काम नौपंच वारम अपने डमरू को, ढक्काम बोलते डमरू को, उस डमरू को नौपंच, नौ और पांच कितना होता है 14 बार बजाया। जब 14 बार बजाया तो उस 14 बार बजाने से सनकादि ऋषियों को तो तत्व ज्ञान हुआ, और इधर जो बाजू में बैठे थे पाणिनि महर्षि जो व्याकरण दर्शन के आदि आचार्य माने जाते हैं, पाणिनि जी ने 14 सूत्र संकलित कर लिया। ऐ उण रिल ऋक् ए ओम ऐ औच हय वर्ट लण यमंगणनम झभय घटदस जब गडदस खप छठत छटत कपय शस रहल। इस तरह से 14 सूत्र उसी डमरू के नाद से जो है निकला ऐसा अंकित कर लिया। एक ही डमरू का नाद है, उसे अपने प्रयोजन के अनुसार सूत्र निर्मित कर ली। उन्हीं सूत्रों के द्वारा इतना बड़ा व्याकरण दर्शन का सृजन हुआ। तो यहां पर भी भगवान शंकर जो तांडव नृत्य कर रहे हैं इससे सभी लोकों में प्रारंभ में बड़ा हलचल मचा। जब कहीं नाच गाना होता है ना कुछ हलचल भी होता है। तो मही मतलब पृथ्वी है, या अचानक संशयित हो गई पृथ्वी का अर्थ है पृथ्वी देवता की, जो पृथ्वी जो अभिमानी देवता है, पृथ्वी तत्व के जो अभिमानी चैतन्य है। हमारे यहाँ अनंत देववाद है और एक देववाद भी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद का यह मंत्र है। एक ही तत्व चैतन्य है उसी को नाना प्रकार से कहा जाता है। जैसे एक ही विद्युत पावर है, वही विद्युत पावर अनेक यंत्रों के द्वारा अनेक कार्य करने में सक्षम होता है। पावर एक ही है पर इतने विपरीत कृत्य होते हैं। कूलर में, फ्रिज में ठंडी वस्तु होती है, हीटर में गर्म। ऐसे एक ही चैतन्य अनेक क्रिया करने में सक्षम होता है। ये उपाधियों का, यंत्रों का फर्क है। वैसे यहाँ पर पृथ्वी तत्व के जो अभिमानी देवता है, ये भगवान शंकर के तांडव नृत्य से, पद के आघात से, आपने देखा होगा कि भगवान का बायां पैर जो है ना नीचे दबा हुआ और ऊपर दाहिना उठाए, उस वाम पैर से काल बल राक्षस को दबा रखा है। फोटो में ना कई बार दिखाई देता है, एक कोई लेटा हुआ है, उसको भगवान शंकर का पैर जो लेटा हुआ है ना, वो काल बल राक्षस है जिससे कि मनुष्य बंधन भाव को प्राप्त करते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के पहले काल बल को धराशायी किया, इसलिए किसी को पता नहीं चला कितना समय बीत गया। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है ना संशयित हो गई, संशय पद को प्राप्त हुई कि हमारी स्थिति कैसे रहेगी। पदम विष्णुर भ्राम्यत भुज परिग रुग्ण ग्रह गणम। और भगवान शंकर जब अपने भुजाओं को घुमाते हैं, त्रिशूल हाथ में है, तो भुजाओं के घुमाने से स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक भी वहां पर भी हलचल मच जाता है। जैसे कोई शंख बजाए ना तो कितना उसका गुंजार होता है, ऐसे ही वहां पर भी स्थिति जो है एक बार डवाडोल हो जाती है। सारे देवता खड़े हो जाते हैं कि क्या होने जा रहा है। मुहूर् द्यौ दौष्ठ्यम, द्यौ लोक भी बार बार जो है संशयित हो जाता है, वहां पर भी वहां के प्राणियों को भी संशय हो जाता है। अनभृत जटा ताडित तटा, भगवान शंकर की जो जटाएं हिलती हैं, जटाओं के प्रहार से, स्पंदन से, हिलने से द्यौ लोक भी अपने आप में भ्रमित होने लगता है। जगत रक्षाए अहो कन्वय करना, अहो मल आश्चर्य है, जगत की रक्षा के लिए जो भगवान का तांडव नृत्य है उससे विपरीत दशा हो रही है। ऐसे ही संसार में होता है। संसार में जब हम अपने परमार्थ मार्ग में अग्रसर होते हैं तो वहां पर विपरीत परिस्थितियां बन जाती है, बिल्कुल विपरीत। आप तो समाज के भलाई के लिए या प्रसन्नता के लिए कोई बढ़िया काम करते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Stephen Hawking, aisa kuch naam hai unka. To unhone ye book likhi hai. Aur usme unhone ye साबित किया है, साबित किया अपने हिसाब से उन्होंने साबित किया कि ये सारा संसार अपने आप बनता है, कहते हैं उनका कर्ता करता कोई नहीं है, कहते ऐसा लिखा उन्होंने, अपने आप बनता है। अब ऐसा एक भी दृष्टांत बताओ, एक भी दृष्टांत ले आओ जो अपने आप बनता हो। हमारे यहां तो आचार्य ने बिल्कुल स्थूल रूप से कहा कि जगताम यदि नो करता कुला लेन विना घट चित्रकारम विना चित्रम सत एव भवित तदा। देखिए बिना चित्रकार चित्र बन जाता है, ऐसा कहीं सुना? संसार में कहीं दृष्टांत है कि अपने आप चित्र हो गया ऐसा नहीं। या ऐसा कोई दृष्टांत ले आइए कुलाल के बिना घट की उत्पत्ति हो गई हो, ही नहीं सकता है। कोई भी कार्य तभी होगा जब उनके उत्पन्न करने वाले के अंदर ज्ञान, चिकित्सा और कृति हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। और चेतन से तो हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां सांख्य दर्शन है, कपिल प्रणीत, उनका कहना है कि सारा संसार है वो जड़ से बना है, प्रधान से बना है। कहते हैं वो जो अभी बुक वाले की बात, उसको तो एक साइड में रख दीजिए, उसका तो यहां कोई क्लास ही नहीं है। हमारे यहां जो है सांख्य तत्व का जिसमें विचार है, सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं, वो सांख्य दर्शन के आचार्य महर्षि कपिल कहते हैं, बड़ा सूक्ष्म विचार किया है उन्होंने। और फिर वो कहते हैं कि सारे संसार की उत्पत्ति जड़ से हुई है, प्रधान से हुई है। आचार्य बादरायण जी ने उनका खंडन कर दिया, इक्षतेर ना शब्दम इत्यादि। जड़ से संसार की उत्पत्ति हो नहीं सकती, चेतन से ही हो सकती है, क्योंकि चेतन है ना वही नाम और रूप दे सकता है। जड़ किसी चीज का नाम नहीं दे सकता है, जड़ है वो किसी चीज को रूप नहीं दे सकता है। और आप लोग इस बात को तो देखते ही, सारे संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनका कोई न कोई नाम है। बिना नाम का कोई पदार्थ ले आइए, बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो नाम साथ में लेकर के आता है क्या? तो कोई नामकरण कोई जड़ करता है? नहीं, चेतन ही नामकरण करते हैं, ये निश्चित बात है। तो भला बताइए जड़ से कैसे संसार हो सकता है? इसलिए ये निश्चित है, श्रुति वाक्यों से ये सिद्ध है कि सारे संसार की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। ये बात उपनिषद से साबित है, इतना ही नहीं स्थापित है, सिद्ध है। तत्व समन्वयात, इस सूत्र से ये आचार्य बादरायण जी ने स्थापित किया कि सभी उपनिषद वाक्यों का एकमात्र ब्रह्म में ही पर्यवसान है। और ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत आनंद स्वरूप है। ऐसे ये ब्रह्म है वो सर्वत्र है, तो ऐसा जो ब्रह्म है वो औपनिषदम है, उपनिषद के द्वारा ही सिद्ध है। इसलिए सर्वम उपनिषदम ब्रह्म, ये जो संसार है वो सब ब्रह्म है। ब्रह्म एव ब्रह्म सत्ता, अतिरिक्त सत्ता शून्य है, ऐसा वो मुमुक्षु को अनुभव होता है। फिर आगे मुमुक्षु आगे जो है प्रार्थना करते हुए तृतीय वाक्य में कहते हैं, अहम ब्रह्म मा निराकुर्याम। ये तृतीय वाक्य बनाया हमने, अहम ब्रह्म मा निराकुर्याम। मुमुक्षु यहां पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं, यानी कि तिरस्कार न करूं। मैं कभी भी ब्रह्म का तिरस्कार न करूं। अच्छा, ब्रह्म का तिरस्कार क्या हो सकता है? क्या आप कोई ब्रह्म को ऐसे पिंडीकृत करके कहीं फेंक सकते हैं क्या? नहीं। तिरस्कार का अभिप्राय है कि ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु अस्ति या नास्ति, इस प्रकार ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु अस्ति इति वा ब्रह्म नास्ति इति वा। ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु है, ब्रह्म अलग है, संसार अलग है, यह मानना क्या ब्रह्म का तिरस्कार है? या ब्रह्म का स्वीकार ही नहीं करना, ब्रह्म नास्ति ये कहना, वो ब्रह्म का तिरस्कार है। देखो, तिरस्कार वो है जो होते हुए भी उनके अस्तित्व को न मानना वो तिरस्कार है। तो ब्रह्म का तिरस्कार, जैसे हम लोग कहते हैं अरे परमात्मा ब्रह्म कहीं है ही नहीं है, तो सब यदि है तो दिखना चाहिए ना, किसी को आज तक तो दिखा नहीं। तो लोग चाहते हैं कि हमको ये चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा दिख जाए, किंतु ऐसा कभी भी संभव नहीं है। चक्षुरादि इंद्रियों का विषय ही नहीं है। अवांग मनस गोचर न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य के द्वारा ये निषेध किया गया है कि ब्रह्म से, ये चक्षुरादि इंद्रियों से ब्रह्म का दर्शन संभव नहीं है। और ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रियों का विषय इसलिए नहीं है कि सज्जनों चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषयों को ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। चक्षु है वो बड़ी सीमित है, वो केवल रूप का ही दर्शन कर सकती है, शब्द का प्रत्यक्ष वो नहीं कर सकती है। और कान भी सीमित है, उनकी शक्ति भी बड़ी सीमित है, वो केवल शब्द श्रवण कर सकता है कान, किंतु उनको कहो रूप का दर्शन तो कर सकेगा नहीं। पांचों ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बड़ी सीमित है, वो एक एक विषय को ही ग्रहण कर सकती है। और ब्रह्म है वो शब्द रूप भी नहीं, स्पर्श रूप रस गंध रूप नहीं है, तो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा भला उनका कैसे ज्ञान हो सकता है बताइए। और ये भी नहीं कि ब्रह्म कोई एक जगह कोई पिंडीकृत होकर के एक जगह पहाड़ में या कहीं समुद्र में या नदी सरोवर में रह जाए कि वहां पर पैदल चल करके जाया जा सके। और ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है कि जिससे उनको हाथ से ग्रहण कर सके। उनका कोई नाम रूप नहीं है कि जिससे उनको वाणी के द्वारा उनको बता सके या त्याग विसर्जन कर सके। इसलिए कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों का वो विषय नहीं है, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम लोग ये सोचे, और क्या सामान्य ये जो यहां पर उपनिषद का श्रवण करने आ रहे वो तो कहते हैं कि ठीक, लेकिन जिसने कभी ये सत्संग नहीं किया है, श्रवण नहीं किया है, वो तो कहेंगे कि परमेश्वर तो है ही नहीं, कहते। आजकल लोग यही स्वीकार करने के तैयार नहीं है कि ब्रह्म है कि नहीं है। और हमारे यहां ये कहा गया कि ब्रह्म नास्ति इति यो ब्रूयात, जो ब्रह्म नहीं है ऐसा जो कहते हैं वो सबसे बड़ा संसार में पापी है। ठीक है, हमको समझ में न आए न दिखे तो ये थोड़ा है, जो चीज हमको नहीं दिखती है वो नहीं होती है, होते हुए भी न दिखे, हो सकता है हमारे अंदर कोई गड़बड़ी हो। देखिए किसी की चक्षु विकर्ण हो गई तो उनको रूप दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि रूप समाप्त हो गया। अरे रूप समाप्त नहीं हो गया, तुम्हारी इंद्रिय विकर्ण हो गई इसलिए तुमको रूप नहीं दिखता है, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि रूप समाप्त हो गया। सूर्य के आड़े बादल आ जाता है तो हमको सूर्यमंडल नहीं दिखता है, तो ये थोड़ा है कि सूर्यमंडल समाप्त हो गया, तुम्हारी जो आंख है ना वो ओझल हो गई इसलिए सूर्य दर्शन नहीं हो रहा। अनच्छन्न दृष्टि, वो दृष्टि जो है वो बादल से ढक गई, लेकिन हम लोग ये स्वीकार नहीं करते, ऐसे थोड़े ना स्वीकार करेंगे। और हम लोग ये मानते हैं कि अरे सूर्यमंडल ये आच्छादित हो गया, बादल से आच्छादित हो गया, कहां शुद्र बादल और कहां महान हजारों योजन में विस्तृत सूर्यमंडल, क्या एक शुद्र बादल सूर्यमंडल को ढक सकता है क्या? नहीं। देखिए ब्रह्म ये सारा संसार है, वो ब्रह्म का पसारा है, लेकिन हमको यदि ब्रह्म न दिखे तो इसमें ब्रह्म का कोई दोष नहीं, हमारा दोष है। इसलिए हम कभी ये न कहें कि हमको परमात्मा ने नहीं दिखता है इसलिए नहीं है। देखिए जो उलूक है, उलूक को सूर्य दर्शन नहीं होता है तो उसमें कोई सूर्य का दोष है क्या? नहीं। हमारा नीति शास्त्र में कहा नोलो कोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्। दिन में उलूक को सूर्य दर्शन न हो सके तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। वो लोग तो यही कहेंगे कि सूर्य नाम की कोई चीज नहीं है, यदि होती तो मेरे को कभी न कभी तो दिखती। धारा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्। देखिए जो धारा है बारिश, वो चातक के मुख में यदि न गिरे तो उसमें मेघ का दूषण है। धारा बारिश का कोई दूषण है क्या? बारिश का दोष है क्या? नहीं, वो चातक अपना मुख बंद करके बैठा। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम्। देखिए वसंत ऋतु की ये महिमा है। वसंत ऋतु में जो है सभी पेड़ पौधे जो है बड़े पल्लवित हो जाते हैं, और एक करीर नाम का एक वृक्ष है, करीर, जिसमें केवल कांटे ही रहते हैं, पत्ता नहीं होता। अब वसंत ऋतु चल रही है किंतु करीर के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते हैं, तो उसमें वसंत ऋतु का दोष है क्या? नहीं, उनका अपना दोष है। तो परमात्मा हमको न दिखे तो उसमें हमारा दोष है। हम ये कभी न कहे कि परमात्मा नहीं है, ऐसा संदेह कभी न करे। ऐसा संदेह या संशय या विपर्य रहेगा तब तक परमात्मा दर्शन नहीं होगा। इसलिए यहां पर यह भावना की गई कि मा ब्रह्म निराकरोद, मा ब्रह्म अहम ब्रह्म मा निराकुरिया, मैं ब्रह्म का कभी भी निराकरण न करूं। ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु है या ब्रह्म नहीं है, ऐसा निराकरण ब्रह्म का मैं तिरस्कार कभी मैं न करूं।

मां ब्रह्म मां निराकरोत, ऐसा एक वाक्य बनाना। मां का अर्थ है माम, मेरे को। ब्रह्म मां निराकरोत, ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, यानी ब्रह्म है वो मेरे को कभी न छोड़े। मां ब्रह्म मां निराकरोत, यानी ब्रह्म से हम प्रार्थना करते हैं स्वस्मान माम वियोजयतु। ये प्रार्थना करे कि हमको ब्रह्म अपने साथ जोड़ ले, ब्रह्म हमको कभी दूर न धकेल दे, यानी कि ब्रह्म के साथ हमारा अभेद हो जाए। कब अभेद होगा? उपनिषद का श्रवण होगा तभी तो, तत्त्वमसी महावाक्य का श्रवण। और ये कब होगा? जब ये सारी बातें होगी तब। और तत्त्वमसी महावाक्य का श्रवण होते ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव पर्यंत ज्ञान हमको हो, ये अभिप्राय है। संसारे मां पातयतु, ये कह रहे हैं कि भगवान हमको उठा लीजिए, आपके साथ मिला लीजिए, ये नहीं कि आप हमको धकेल दे और हम संसार में पड़े रहे, ऐसा नहीं। संसारे मां पातयतु, मेरे को संसार में मत डालिए, आपके साथ एक कर दीजिए, ऐसा उपाय करे, ऐसी अनुकूलता कर दे कि मैं आपसे एक हो जाऊं, कभी दूर ना रहूं मैं। इतनी बड़ी दिव्य भावना इस शांति मंत्र में छिपी है। और देखो आगे कहते तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा, ये जो है ना उसको वाक्य बनाए, तदात्मनि निरते धर्मा ते मई संतु, ये अंतिम वाक्य है। तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मई संतु, ये कहना। देखो कहते हैं तदात्मनि निरते, अब जो है इस प्रकार की भावना से मुमुक्षु जो है बिल्कुल ब्रह्म में क्या हो गया? निरत हो गया। किस में? तदात्मनि, आत्मा में वो निरत हो गया। ब्रह्मात्मनि निरते, ब्रह्म में रमण करने योग्य हो गया, ब्रह्म की ओर अभिमुख हो गया। इस प्रकार की भावना के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो मुमुक्षु है वो ब्रह्म में निरत हो गया। तो ब्रह्म में प्रेम करने लगा वो, तो ब्रह्म में प्रेम करते हुए क्या करना है? तो मुमुक्षु जो है वो ये अभिलाषा रखते हैं कि ये उपनिषत् धर्मास्ते मई संतो, अब मैं ब्रह्म की ओर अभिमुख हूं, ब्रह्म जिज्ञासु हूं मैं, तो ब्रह्म जिज्ञासु मैं पूर्ण रूप से कब हो सकूंगा? तो कहा जब मेरे अंदर ये उपनिषद के अंदर जो प्रकाशित धर्म है वो मेरे अंदर आए। उपनिषद में ब्रह्म को जानने के लिए जो अधिकारी के लक्षण बताए गए हैं, जो अधिकार चाहिए वो मेरे अंदर आए। तो उपनिषद में अधिकार का जहां विचार किया तो वहां पर कहा गया कि जो विवेक वैराग्य शमदमादि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार साधन से जो युक्त होगा वो ये ब्रह्म को जान सकेगा। ब्रह्म की जिज्ञासा ही उनको होगी जो विवेक आदि चार साधन से संपन्न है। तो ये जो है विवेक आदि चार साधन शमदमादि शांत दांत उपरति तितिक्षु श्रद्धा समाहि तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मनम पश्येत, ये जो है वो तो धर्म मेरे अंदर आए तो फिर मैं ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव करने में मैं समर्थ हो जाऊं, ते मई संतु मेरे अंदर आ जाए और मैं साधन चतुष्टय संपन्न हो जाऊं और ये उपनिषद का श्रवण करने में समर्थ हो जाऊं। मनन और निधिध्यासन पूर्वक जब श्रवण होगा तो श्रवण से साक्षात्कार होगा और अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का अनुभव तक

0: जाऊं और मेरा संसार निवृत्त हो जाए। और अंत में तीन बार शांति शब्द का उच्चारण का अभिप्राय है, आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक, ये तीनों जो है दोषों की निवृत्ति हो और मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं। तो ये जो है शांति मंत्र के प्रवचन की जो श्रृंखला है वो मैं यहीं समाप्त करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग जो है परमात्मा में निरत रहे और अपने स्वरूप का अनुभव करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: नारायण नारायण नारायण नारायण। आइए हम सब मिलकर हृदय की संपूर्ण गहराई से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे संत प्रेमपुरी में आते हैं और हमारे कल्याण के लिए हमारा मार्ग दर्शन करते हैं। वैदिक शांति पाठ का कितना महत्व है और कितनी आवश्यकता है हमारे दैनिक जीवन में, इसको बड़ी गहराई के साथ और बड़ी शांति के साथ स्वामी जी ने इन दिनों में हमें समझाया। जैसे हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, हमारा कार्य सफल हो। वैसे ही जैसे हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं वैसे ही हमारे दैनिक जीवन में वैदिक शांति पाठ का महत्व है, शांति पाठ की आवश्यकता है। स्वामी जी ने बताया वैदिक शांति पाठ के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो हम श्रवण करते हैं प्रवचन के माध्यम से उसको हम कभी भूले नहीं। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी आप पधारे हैं, प्रेमपुरी पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं यह कह रहा था कि वैदिक शांति पाठ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। स्वामी जी ने बताया कि वैदिक शांति पाठ के माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम श्रवण करते हैं प्रवचन के माध्यम से उसको कभी हम भूले नहीं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़े, हमारी याददाश्त बढ़े और जो कुछ भी हम प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय के माध्यम से सुनते हैं वो हमारे जीवन में उतरे, हमारे आचरण में आए। स्वामी जी ने बताया कि हमारी पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां और ग्यारहवां मन ये स्वस्थ रहे और हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हों और हम अंतर्मुखी होकर आत्मदर्शन कर सकें, आत्मतत्व का दर्शन कर सकें। स्वामी जी ने बताया वैदिक शांति पाठ के माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि संसार रूपी अज्ञान का मोह का जो वृक्ष है, स्वामी जी ने वृक्ष शब्द का उपयोग किया है कि उस वृक्ष को काटने में हम समर्थ हों। और एक बात यह कही है कि जो कुछ भी है सो वासुदेवी है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम, वासुदेव के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसका आपने स्वर्ण आभूषण मृतिका और घटक सूत और कपड़ा इसके माध्यम से बहुत गहराई में जाकर हमें समझाया है कि जो कुछ भी है सो वासुदेवी है। मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के सचों में वंदना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अगले वर्ष भी आप पधारकर हमें धन्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्। जय श्री कृष्ण।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Shabd aur kriya ke bina aapka krodh bahar nahi aata hai. आप अपने क्रोध को नियंत्रण में करना चाहते हैं? ईमानदारी से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपका सूत्र है, आप जितना उसको शब्द और क्रिया देंगे उतना वो गहरा होता जाए। जैसे आप कभी देखते हैं ना, पेड़ है, जितनी शाखाएं उसकी आकाश में फैलती जाएगी उतना उसकी जड़ें और जमीन में गहरी होती जाएगी। आपके मन में क्रोध उठा मन में और वो क्रोध ढूंढने लगा शब्द अथवा क्रिया, आप गाली देना चाहते हैं, ये शब्द माने आप गाली, शब्द के द्वारा वो क्रोध आपका बाहर आएगा, अथवा आपका क्रोध आपके भीतर से क्रिया के द्वारा बाहर आए। क्रिया माने जैसे आंखें लाल, आंखें थोड़ा कहते हैं ना कि आंखें थोड़ा तैराने लगे आज, अथवा हाथ आपका उठने लगा, आप इधर उधर करने लगे, क्रिया है। शब्द और क्रिया के द्वारा आपका भीतर का क्रोध बाहर आ रहा है। आपने क्रिया दिया, आपने शब्द दिया ना, अब वो बाहर होगा, अब आपका क्रोध और गहरा होगा, और गहरा होगा। और आप शब्द और क्रिया ही मैं नहीं देना, आप नियंत्रण करना चाहते हैं। आपने सुना ना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, काम क्रोध लोभ ज्ञानी के जीवन में भी होते हैं लेकिन सहते, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है भगवान, कहते ज्ञानी व्यक्ति काम क्रोध लोभ को सहता है और अज्ञानी व्यक्ति नहीं सहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अज्ञानी व्यक्ति अपने काम क्रोध को शब्द अथवा क्रिया दे देता है और ज्ञानी व्यक्ति अपने काम क्रोध लोभ को शब्द अथवा क्रिया नहीं देता है। ध्यान देना, यही अर्थ है उसका, सहने का अर्थ यही है। ज्ञानी के मन में भी क्रोध आया लेकिन ज्ञानी ने क्या किया, उसको शब्द और क्रिया नहीं दी, माने उसने सहन कर लिया। और जब आप शब्द और क्रिया जब नहीं देते तो वो काम, वो क्रोध, वो लोभ जहां का वहीं खत्म हो जाता है। यहां पर पहली क्रोध की लकीर उनके हृदय में उठी और उसके बाद फिर उन्होंने वहीं उसको दफना दिया होता तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने एक बार रोका, दोबारा रोका, तीसरी बार रोक नहीं पाए और उनको शब्द मिल गया। देखो कैसा शब्द मिला, अपने भीतर के क्रोध को बाहर करने के लिए शब्द मिल गया उनको, और ऐसा भयंकर शब्द, मृत्वे त्वाम ददामि ति, तुमको मैं मृत्यु को दान देता हूं। हाँ, ये जो क्रोध है ना, ये क्रोध है, क्रोध में आदमी अपना विवेक खो देता है। इसलिए आप कभी श्रवण करते हैं, ये क्रोध हमारे जीवन में आया हुआ क्षणिक आया हुआ पागलपन आप श्रवण करते कि नहीं, यही तो है। मैं आपको इस प्रसंग में एक भगवान की बात कहना चाहूंगा। भगवान ने तीन नरक के द्वार बोला है ना, क्या है श्लोक वो, काम क्रोध लोभ त्रिविधम अस्येदम नरकस्य द्वारम। भगवान ने कहा काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, ऐसे बोला है कि? अरे यही तो नरक का द्वार है और क्या। आज अपना बेटा और वो उनके हित में कोई बात कहने जा रहा है, और उनके पिता ने क्या बोला कि तुम मृत्यु के पास चले जाओ, मर जाओ हा? और वो वाणी ऋषि की वाणी व्यर्थ नहीं जाने वाली, और यही तो है नरक, यही तो दुख विषाद। लेकिन वो भगवान की जो बात है ना बड़ी गहरी है, काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। तो यहां काम क्रोध और लोभ, काम माने इच्छा है, और काम जब पूर्ण होता है तो लोभ बन जाता है, तृप्त काम का रूपांतरण लोभ है और अतृप्त काम का रूपांतरण क्रोध है। अब ध्यान देना, जब आपकी कामना जब तृप्त हो जाती है ना तो लोभ बन जाती है। आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास 1,00,000 रुपए आ जाए, आ गए तो आपकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं? हाँ, इच्छा पूरी नहीं हुई, अब वो इच्छा लोभ बन गई, और चाहिए। आपको 2,00,000 मिले, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा आपकी और गहरी हो गई, अब लोभ बन गई, और 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000। इच्छा जब तृप्त होती है तो इच्छा वो लोभ में रूपांतरित हो जाती है, और इच्छा जब तृप्त नहीं होती ना तो अतृप्त इच्छा क्रोध में रूपांतरित हो जाती है। ये क्रोध का मूल यही है। आपको क्रोध क्यों आता है? भगवान कहते हैं कि आपकी कामना जब अतृप्त रह जाती है तो वो कामना क्या बन जाती है? क्रोध। अब यहां देखो, कामना यही थी, ये अपने पुत्र को भी बचाना चाहते थे और पुत्र के लिए भी बचाना चाहते थे। यहां कामना है पुत्र को बचाना और पुत्र के लिए भी धन संपदा बचाना, वहां कामना। लेकिन आज उन्होंने, उस नचिकेता ने, दोनों कामनाओं पर आघात किया, और जैसे आघात हुआ ना कामना पर, वो कामना क्रोध में रूपांतरित हो गई। क्रोध में आकर के उन्होंने कहा मृत्वे त्वाम ददामि। ये काम क्रोध लोभ ये तीनों चीजें हमारे जीवन में वरदान है, ये अभिशाप नहीं है। हम लोग अक्सर श्रवण करते हैं ना कि काम ये क्रोध ये लोभ। एक आपके लिए सदगृहस्थ आदमी के लिए बात कह रहा हूं, सन्यासी के लिए नहीं भाई। ये वरदान है, काम क्रोध लोभ ये वरदान है। ये काम जो है ना ब्रह्मा का रूप है, सृजनात्मक है, लोभ विष्णु का रूप है, पालनात्मक है, और क्रोध जो है ना ये भगवान शंकर का रूप है, संरक्षणात्मक है। यदि काम ना हो तो नया सृजन संभव ही नहीं है, लोभ ना हो तो पालन संभव नहीं है। और लोग, आप यहां सत्संग में बैठे हैं, लोभ है कि नहीं? आप भगवान से प्रेम करते हैं, वो लोभ है कि नहीं? लोभ के बिना आप क्या करोगे? आप अपने बच्चों के प्रति जो लोभ है ना उसको वात्सल्य बोलते हैं, बराबर वाले के प्रति जो लोभ है उसको प्रेम बोलते हैं, अपने से बड़े माता पिता संत जन गुरुजन के प्रति जो लोभ है उसको श्रद्धा बोलते हैं, और भगवान के प्रति जो लोभ है ना उसको भक्ति बोलते हैं। यह लोभ ही तो है, वही लोभ भगवान की भक्ति बनता है, वही लोभ श्रद्धा बनता है, वही लोभ प्रेम बनता है, वही लोभ वात्सल्य बनता है। आज भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति, जब ध्यान के प्रति जो आपका लोभ है, ये भक्ति है, ये लोभ के बिना कैसे संभव है? इसलिए लोभ में संकलन होता है, परिग्रह होता है, लोभ में आप जुड़ते हैं, ये भगवान विष्णु का रूप। और आपका जो क्रोध है ना उसमें संरक्षण होता है। दुनिया में हर जगह पर भगवान ने हर चीज की संरक्षणता के लिए कोई ना कोई चीज दी है। अब आप कुत्ते को छेड़ोगे तो कुत्ता क्या करता है? दांत दिखा देता है। आप गधे को छेड़ोगे तो लात दिखा देता है, गाय को छेड़ोगे तो सींग दिखा देता है, लेकिन आप आदमी को छेड़ोगे तो आपको आदमी क्या दिखाता है? आग दिखाता है, क्योंकि इसके पास ये लात मारने के लिए नहीं है, और ये दांत भी कुत्ते की तरह काटने के लिए नहीं है, और सींग तो है ही नहीं। तो आदमी अपनी सुरक्षा के लिए अपने भीतर के क्रोध को बाहर करना चाहता है तो उसके पास क्या साधन है? आंख है, ये वरदान है, आपकी सुरक्षा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई छेड़े नहीं, आप रास्ते में चल रहे हैं, तो आपको कोई छेड़ता है क्या? क्यों नहीं छेड़ता है? उसको मालूम है कि ये क्रोध कर देंगे, गुस्सा कर देंगे। सामने वाले को मालूम हो कि गुस्सा करता ही नहीं तो आपकी सुरक्षा नहीं होगी। क्रोध आपको भगवान ने आप अपनी सुरक्षा के लिए दिया है, ये भगवान का अस्त्र है, आपको दिया गया अस्त्र है, इसलिए उसकी रक्षा करना है। ये आपका क्रोध आपकी सुरक्षा के लिए। इसलिए तीनों चीजें हमारे जीवन में वरदान है। और भगवान ने भी कहा ना, कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान ने कहा मैं काम हूं। और वो काम शब्द आपका उपलक्षण है, उपलक्षण का मतलब था स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, जो अपना बोध कराते हुए दूसरे का भी बोध करा देता है उसको उपलक्षण बोलते हैं। यहां काम, कामोस्मि में जो काम शब्द है ना, वो क्रोध का भी द्योतन है, वह लोभ का भी द्योतन करता है। भगवान कहते मैं काम हूं, मैं क्रोध हूं, मैं लोभ हूं, और ये सृजनात्मक है, वरदान है। फिर भगवान ने नरक का द्वार क्यों बोला, ये प्रश्न आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं मैं। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मैं काम हूं, और दूसरे तरफ भगवान कहते हैं कि वो काम नरक का द्वार है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, भगवान ने काम को नरक का द्वार कहा है कि नरक कहा है? भगवान ने गीता जी में क्या कहा, क्या है? काम क्रोध लोभ, इन तीनों को नरक कहा है कि नरक का द्वार कहा है? और द्वार का मतलब क्या है? आप द्वार में खड़े हैं तो आप अंदर खड़े हैं कि बाहर खड़े हैं? आप दरवाजे में खड़े हैं, गिरीश जी ने देखा, ओहो दरवाजे में द्वार पर खड़े हैं, हाँ, तो पहले देखो कि वो अंदर खड़े हैं कि बाहर खड़े हैं। वस्तुतः आप द्वार में खड़े हैं ना, तो न अंदर है न बाहर है। आप कई बार बोलते हैं ना कि भैया दरवाजे में क्यों खड़े हैं, हा? या तो अंदर आओ नहीं तो द्वार माने संभावना है, द्वार माने संभावना है, अंदर आने की भी संभावना है और बाहर जाने की भी संभावना है। दीवार है तो वहां कोई संभावना नहीं है, वो दीवार है कोई संभावना नहीं, ना अंदर आने की संभावना और ना, लेकिन आप द्वार में है तो संभावना बन गई, आप चाहे तो अंदर आ सकते हैं और ना चाहे तो बाहर हो सकते हैं। तो आप काम में है, हा? तो काम में है तो आप कहां हैं? आप नरक में है कि नरक के द्वार में है? नरक के द्वार में, सावधान। हाँ, अब थोड़ा सा भी आगे बढ़े, ज्यादा दूर नहीं, दरवाजा होता है ना वो ज्यादा दूर का नहीं होता है। आप द्वार में है ना तो आप बहुत निकट है, बहुत निकट, एक कदम, हाँ, एक कदम भी ज्यादा हो गया। आप द्वार में है तो बहुत निकट है, बहुत निकट है। आप दरवाजे पर खड़े हैं, अब बिल्कुल थोड़ा सा धक्का लगा अंदर नहीं तो बाहर। आप क्रोध में, क्रोध में आप, क्रोध आया, आप क्रोध आया तो उस समय आपको याद रखना चाहिए कि अभी कहां पर खड़े हम। आप नरक में नहीं है, नरक के द्वार में है। आप सावधान, सावधान, रुको भैया रुको, इसके आगे नहीं बढ़ना है। एक कोई पंडित जी थे, नहीं होता है। एक पंडित जी थे और वो प्रवचन कर रहे थे, यही जो मैं बोल रहा हूं, नरक का द्वार। तो एक कोई क्षत्रिय वीर सैनिक था और वो भी प्रवचन में सुन रहा था। अरे बोले, हमको तो क्रोध ही क्रोध करना पड़ता है हमेशा, और ये पंडित जी तो कह रहे हैं कि नरक का द्वार, तो क्या बोले हमारा जीवन नरक है? चलो प्रवचन के बाद मैं पंडित जी को पूछ लेता हूं कि ये नरक का द्वार है क्या ये। प्रवचन खत्म हुआ, हाथ में तलवार भी थी, सेना के वेश में थे, पहुंच गए, पंडित जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, पंडित जी आप कह रहे थे काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार होते हैं, तो आप समझाइए कि ये क्या चीज है। अब पंडित जी भी बड़े मजेदार, पंडित जी ने कहा छीछी तुम्हारे जैसे आदमी से तो हम बात भी नहीं करते। बोले जाओ पहले, पहले नहाओ धो कपड़े बदल के आओ और उसके बाद तुम हमसे बात करना। और ये जब सुना बड़ा क्रोध आया उसको। अरे बोले मैं अभी दिखा देता हूं तुमको स्नान क्या होता है। मैं स्नान संध्या सब कुछ करके आया और तुमको मैं गंदा दिखता हूं। लो अभी मैं तुमको स्वर्ग पहुंचा देता हूं। मैं निकाली तलवार और निकाल करके गर्दन पर रखी। पंडित जी ने कहा रुको रुको अभी तुम नरक के द्वार में खड़े हो। अरे बोले रुको रुको अभी रुको आगे मत बढ़ना। बोले यही नरक का द्वार है। भगवान ने जो बोला है ना कि नरक का द्वार, बोले यही है यही है। अभी तुम कहां पर खड़े हो? अभी तुम नरक नहीं गए हो, अभी तुमने तलवार उठा करके गर्दन पर ही तरखी है, क्रोध में हो, अब तुम मुझे काटना चाहते हो, अब तुम नरक के द्वार पर खड़े हो। ओ बोले वाह ऐसी बात नहीं। पंडित जी ने दिखा दिया कि क्या होता है नरक का द्वार क्या होता है। तो नारायण भावना का निर्माण होना, मन में आना बड़ी बात नहीं है। आपके मन में काम उठा, क्रोध उठा, लोभ उठा, ठीक है। बगल वाले की कोई अच्छी चीज आपको दिखाई दी और मन में आया उठा लू क्या? मन में आया है ना, ठीक है। आप उसको आगे मत बढ़ाना, आप उसको बिल्कुल नहीं आगे बढ़ना। किसी भी चीज के बारे में काम क्रोध लोभ मद मत्सर आपके मन में आया है, आप उसको आगे मत बढ़ाना। आगे बढ़ाओगे तो क्या है आगे? नरक है। अभी तो दरवाजा है भैया, दरवाजा है। इसलिए भगवान ने कहा काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। अब आप इसको कैसे बदल देते हैं? तो आप इसको अभी आप जैसे बोल रहे थे हो ना धर्म, आप जोड़ देना जो धर्म सम्मत काम है वो स्वर्ग का द्वार और जो अधर्म सम्मत काम है वो नरक का द्वार, जो धर्म सम्मत लोभ है वो स्वर्ग का द्वार और जिस लोभ के साथ आपका अधर्म जुड़ गया तो वो नरक का द्वार। धर्म सम्मत क्रोध है तो वहां आपका वो क्या है, आपने क्रोध भी कर दिया तो भी ज्यादा वहां ये नहीं है, धर्म जुड़ा हुआ है ना। धर्म सम्मत यदि क्रोध है तो वो क्या है, स्वर्ग का द्वार। और अधर्म सम्मत क्रोध अनियंत्रित हो तो समझना कि वो नरक का द्वार है। इसलिए ध्यान देना, हम सब कुछ करते हैं तरीके से लेकिन हम नहीं करते क्रोध को तरीके से, आप ध्यान देना। यहां पर क्रोध का निषेध नहीं है, आपको क्रोध करने का काम का लोभ का समय देश काल वस्तु आदि का आपको ध्यान रखना है। आपको क्रोध करना जरूर है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्रोध कितना करना है, कितने तरीके से करना है। वो तरीका आपको उदाहरण सुना देता हूं आपकी पुराणों का। आप लोगों ने सुना ना कि अयोध्या जी में भवन थे, कौन सा भवन था? बहुत भवन थे लेकिन उसमें एक भवन का नाम तो आपने जरूर सुना, कोप भवन। लेकिन केवल वहां कोप भवन की चर्चा की है, वहां काम भवन भी था, वहां लोभ भवन भी था, वहां क्रोध भवन भी था और उन भवनों का बड़ा प्रयोजन था। भवन का जिसके लिए जो भवन है उसी के लिए उसका उपयोग करना है। आप काम भवन का उपयोग केवल काम के लिए और लोभ भवन का उपयोग केवल लोभ के लिए। अब मान लो आपको अर्थशास्त्र के ऊपर विचार करना है, अब आपको राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना है तो आप क्या घर में भोजन करते समय करोगे? क्या पत्नी बैठी वही करोगे? नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे वो अलग है, डिपार्टमेंट अलग है। अब आपको वहां लोभ की चर्चा वही बैठ के करना है और उसके लोग अलग होंगे। आपको काम की चर्चा करना है तो वो बिल्कुल अलग, वो तो गोपनीय चीज भी बिल्कुल अलग, उसका भवन अलग है। और आपको किसके ऊपर गुस्सा करना है क्रोध करना है तो आप रास्ते में मंत्रियों के सामने लड़ेंगे? मान लो कि क्रोध आया है, राजा दशरथ को क्रोध आया कैकेयी के ऊपर आया, आता तो होगा, कभी उनको कौशल्या को डांटना पड़ता, नौकर चाकरों को डांटना पड़ता, तो भरी सभा में सबके बीच में डांटेंगे क्या? ये तो बड़ी असभ्यता है। आपको क्रोध आया और उस क्रोध को आप हर जगह पर प्रकट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी असभ्यता है। और आप जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं भाई उसी के ऊपर क्रोध करो। ये एक विज्ञान था, इसके मूल में यही विज्ञान था। आपको क्रोध करना है तो आपका क्रोध आपके बच्चों को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मम्मी पापा क्रोध कर रहे हैं। समझ में आया? ये विज्ञान था गिरीश जी उस समय का। आप पति पत्नी लड़ रहे हैं तो आपके बच्चों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि लड़ रहे हैं, नहीं तो आपके क्रोध का दुष्परिणाम आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा। करेंगे क्रोध आप और उसका परिणाम भोगेंगे बच्चे। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, आसपास के लोगों को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। ऐसा कई कई मैंने देखा है, कहीं कहीं अभी आज भी ऐसे लोग हैं कि पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उसी समय बाहर का कोई आदमी आया और उसी समय उनका झगड़ा बंद और बनावटी मुस्कुराने लगते फिर हैं और कोशिश करते कि जल्दी निकल जाए जिससे कि अपने को लड़ना है जल्दी निकल जाए लड़ना है अपने को। तो नारायण ये विधि थी, ये आपके विधि कोप भवन और सूचना, जिसके ऊपर क्रोध करना उसको सूचना दी जाती कि तुम्हारे ऊपर हमारा क्रोध है, आ जाओ कोप भवन में जाके बैठ गए। और वो आएगा आदमी, उसके बाद उसको भी दरवाजा बंद करके फिर क्रोध किया जाएगा, उसको किसी को मालूम नहीं क्या क्रोध हुआ। अब वहां कई कई राजा दशरथ के ऊपर क्रोध करती हैं और वो जाके बैठ जाती हैं कोप भवन में, सूचना देती हैं राजा दशरथ को तुम्हारे ऊपर मुझे क्रोध आया है। नियंत्रण तो चाहिए ना भैया, इसके लिए नियंत्रण तो चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं। और उसके बाद फिर जो आपको क्रोध करना है ना, जैसा क्रोध निकालना है खुला, आदमी ही जब सबके बीच में क्रोध करता है ना तो सही ढंग से क्रोध भी नहीं कर पाता है, वो कहां कर पाता है, अर्धम अर्धम हो जाता है। और आप अकेले हैं, दरवाजा बंद है, अब जितना लड़ो मारो पीटो हाथ पैर जोड़ो जो इसलिए राजा दशरथ पैर भी जोड़े थे कि नहीं, बात बड़ी गोपनीय थी, मालूम पड़ गई तुलसीदास जी को, ये बात अलग है लेकिन बात बड़ी गोपनीय थी। और बाहर सबके बीच में यदि राजा दशरथ को समझाना होता तो हाथ पैर जोड़ते क्या? नहीं जोड़ते। ये विधि है, इसलिए हमको तरीके से काम क्रोध लोभ ये धर्म सम्मत हो, इसके साथ देश काल वस्तु सब जुड़ी हो और इसमें नियंत्रण होना चाहिए। अब यहां नारायण यही दिखाना चाहती श्रुति, बालक नचिकेता ने उनको दिखाया, सत्य का मार्ग दिखाया, विधि का मार्ग दिखाया, लेकिन वे समझ नहीं पाए और न समझकर वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए और उसका परिणाम मृत्वित्वाम ददामी थी, तुमको मैं मृत्यु को दान दे देता हूं। अब मृत्यु की बात जब सुनी बालक नचिकेता ने तो घबरा गए क्या? नहीं घबराए। बालक नचिकेता बैठ गए, अब विचार करने लगे, बहु नामीति प्रथमः बहु नामीति मध्यमः किंचित् यमस्य कर्तव्यम् तन्मयाद्य करिष्यति। ओहो पिताजी ने मुझे तो मृत्यु को दान दे दिया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात, खुश हो गए हो, खुश हो गए। आज देखो कितना ऊंचे पितृभक्त, कितनी ऊंची भावना में बालक नचिकेता है। आज सोचने लगे ओहो मेरा नंबर कितना नंबर है, देखू तो मैं मेरे में पुत्र का जो कर्तव्य बोध है कितना है, कितने नंबर का पुत्र हूं मैं देखूं। पहले नंबर का पुत्र वो होता है, दूसरे नंबर का पुत्र वो होता है, तीसरे नंबर का पुत्र, ये गिनाया उन्होंने। बहु नामीति प्रथम, ओहो बहुत जगह पर तो मैं पहले नंबर में आता हूं, पहले नंबर। पिता की बात मन में रहती है, कहना चाहते और मैं समझ जाता हूं, वो पहले नंबर में। और कभी कभी समझ नहीं पाता हूं, पिता को कहना पड़ता है और कहने के बाद मैं करता हूं, हाँ श्रद्धापूर्वक करता हूं। बहुनामीति मध्यम और बहुनामीति आप जोड़ना, आप कभी कभी, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं बालक नचिकेता, कहते कि बहुनामीति प्रथम बहुनामीति मध्यम और तीसरे नंबर में तो कभी मैं रहता ही नहीं हूं, ऐसा मतलब है वो तीसरा नहीं गिना है उन्होंने। या तो मैं पहले में रहता हूं या तो मैं तीसरे में, तो कभी मेरा नंबर आता ही नहीं है। तीसरा का मतलब होता है बोलने के बाद आप अश्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, आप बोलने के बाद अश्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। चलो कह दिया तो करना है यार, निपटाना है, वो तीसरे नंबर तो है ही नहीं मेरा, अब क्या करना चाहिए, अब मुझे मृत्यु के पास जाना चाहिए। और मृत्यु का ऐसा कौन सा काम होगा जो मेरे पिताजी करना चाहते हैं। वो बालक मृत्यु से बिना डरे, मृत्यु से बिना डरे, यम मृत्यु यम, ये दोनों अलग चीजें नहीं है, बिना डरे वो पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं? यम के पास। मैं आपको कल बताऊंगा मृत्यु क्या चीज है, क्योंकि मृत्यु से तो हम बहुत डरते हैं, लेकिन बालक नचिकेता मृत्यु से नहीं डरते हैं। मृत्यु का मतलब क्या है और हम मृत्यु से क्यों डरते हैं, इस विषय पर कल थोड़ा प्रकाश डालूंगा। आज एक माला जप करेंगे, उसके बाद हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज इतने दिनों तक आप लोगों के बीच में रहे, बड़ा आनंद आया। वृंदावन में बड़े विरक्त भाव से परिव्राजक मनोवृत्ति से विचरण करते हैं, खूब परिक्रमाएं करते हैं गिरिराज की, वृंदावन की, और हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं। ऐसे परम विरक्त हमारे स्वामी जी हम लोगों के बीच में रहे, बड़ा आनंद आया। और अभी वो भी आपको आशीर्वचन प्रदान करेंगे, पहले एक माला जप कर लेते हैं।